सबमत उन पर 48 के जैस मास की तिथि ग्यारह अधिनुसार एक जून सन 2026 सुबह के 5:58 मिनट हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की

की बातचीत से कहा ये पहला बात

बाद में जो दूसरे

प्रत्येक मिनट पर आज के पन का इसके अंतर्गत एस सुनेगा अभिनेत्री नरगिस

था अयोध्या के आए पुरजनों सहित भरत श्री राम सीता तथा लक्ष्मण की पर्णकुटी के मार्ग पर पैदल अग्रसर हो रहे हैं। मार्ग में मिलने वाले कोल भील वानप्रस्थियों तथा व्रत सन्यासियों से उनका एक ही प्रश्न है, श्री राम का निवास किस वन में। मार्ग में एक रात्रि के विश्राम के बाद भरत

un bureau créatif. श्रोताओ, कोई पूछे कि हमारे देश में रेडियो पर सबसे अधिक क्या सुना जाता है तो वो है संगीत, और उसमें भी फिल्म संगीत के सुनने वालों की बहुतायत है। हमारा फिल्म संगीत संस्कारित है शास्त्रीय संगीत से। फिल्म संगीत में अपने कला

0: आकाशवाणी परिवार के आत्मीय सदस्य रविंद्र विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: इससे पहले कि हमारी चर्चा शुरू हो, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें कि आकाशवाणी में से किस तरह से आपका जुड़ाव हुआ, कैसे आप आकाशवाणी में आए।
1: जी, मैं बचपन से ही संगीत से जुड़ा हूँ और मैंने तबला सीखने की शुरुआत जो है वो मेरे 6 साल की आयु में की है। मैं शुरू में आकाशवाणी का चाइल्ड आर्टिस्ट था, उसके बाद में मैं आकाशवाणी का ही यूथ आर्टिस्ट बना।
0: क्या बात।
1: और 1988 में मैंने UPSC की एग्जाम देकर आकाशवाणी में मैं कार्यक्रम अधिशासी के रूप में मैंने ज्वाइन किया। मैं तो कई आकाशवाणी केंद्रों पर काम कर चुका हूँ महाराष्ट्र में
0: जी,
1: क्योंकि संगीत से हमारा जुड़ाव था और हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते आए थे संगीत की। तो आकाशवाणी में आने के बाद में मैंने आकाशवाणी की म्यूजिक कंपोजर की ऑडिशन दी। कहते हैं कि अगर आपने हुनर है तो वो हुनर दिखाने के लिए आकाशवाणी जैसा और कोई व्यासपीठ है नहीं। तो आकाशवाणी ने तो मुझे बचपन से ही बहुत कुछ दिया और उसी में जब नौकरी करने आया तब मैंने आकाशवाणी में म्यूजिक कंपोजर की ऑडिशन दी और मैं प्रभु की कृपा से ग्रेड 1 म्यूजिक कंपोजर हूँ। कई सारे म्यूजिकल फीचर हमने आकाशवाणी के लिए किए। उसके बाद मैं आकाशवाणी के सॉन्ग ऑफ द मंथ में कई सारे गानों में संगीत दिया
0: ज़्यादा
1: और बहुत सारी रचनाएं आकाशवाणी के लिए की हैं। तो ये मेरा संगीत का जो बचपन से

0: सर्व जारी है, क्या बात है। तो आज हमारे अपने एक अधिकारी है मगर एक कलाकार के रूप में आज श्रोताओं के सामने है, हमारे बीच उपस्थित है। आप तो अपनी श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं, फिल्म संगीत में, सिने संगीत में तबले का जो दौर है उसकी बात होगी और समय के अनुसार इसमें जो परिवर्तन आया है उस पर हम बात करेंगे।
1: जी,
0: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे रविंद्र जी कि तबला ये जो वाद्य है इसका जन्म कैसे हुआ और इसके जन्म से जुड़ी कोई कहानी होगी तो उसके बारे में भी कृपया हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: हम लोग अगर हमारे पुराने कल्चर देखते हैं
0: जी
1: तो उसमें ज़्यादातर हमें यही दिखता है कि मृदुंग या पखावज
0: जी
1: ये वाद्य हमारे पास थे और हमारे यहाँ पर ध्रुपद धमार गायकी होती थी।
0: जी,
1: फिर जब अकबर बादशाह के ज़माने में ख्याल गायकी का विस्तार होने लगा
0: जी
1: तो उसमें ये होता था कि ख्याल का जो गायन है वो मृदु शैली में है और उसके ऊपर पखावज के बोल भारी पड़ते थे
0: जी।
1: तो इसलिए शायद तबले के जन्म की कथा जो है वहाँ से शुरू ही हुई है। कहते हैं कि अमीर खुसरो साहब जो है उन्होंने पखावज को विभाजित किया, मतलब दो भागों में उसका विभाजन किया और उसका जो आकार है वो तबले का आकार उसका दिया
0: जी।
1: तो बाया और दाया ऐसे उसके दो भाग हुए और कहते हैं कि वो जब तोड़ा तब बोला।
0: हाँ,
1: तो तब बोला से वो तबला शब्द वहाँ से आया है। अब ये तो मतलब कहानी है, इस पर किसका कितना विश्वास होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन तबला वाद्य जो है ये वाद्य दाया बाया दोनों का मिला हुआ वाद्य है और उसने पखावज की तुलना में उसके जो बंद बोल है वो ख्याल गायकी के लिए बहुत अच्छे उसके साथ में मिल गए
0: जी
1: और इसलिए ख्याल गायन में तबला संगति का प्रचलन होने लगा।
0: पखावज के जो बोल होते हैं रविंद्र जी और तबले के बोल, इनमें अंतर क्या है?
1: वैसे पखावज जो है वो खुला वाद्य है
0: जी,
1: मतलब पखावज पे वो धा जो है वो खुला खुला बाहर निकाला जाता है। तो पखावज जो है वो खुला वाद्य है, उस पर खुले बोल बजते हैं
0: जी जी।
1: अब पखावज का जो धा खुला बजता है वही धा तबले पर बंद है वो धा। तो तबले के जो बोल है वो बंद बोल है
0: जी
1: और पखावज के खुले बोल
0: खुले बोल।
1: वैसे शुरू में हमारे पास पखावज था तो पखावज का जो साहित्य था वो बहुत विपुल साहित्य है पखावज का
0: जी,
1: तो उसी साहित्य को लेकर तबले का भी साहित्य बढ़ने लगा,
0: इसका भी एक अलग शास्त्र बना।
1: बिल्कुल, शास्त्र बना, तबले के घराने बने जैसे दिल्ली, अजराड़ा, पंजाब, बनारस, लखनऊ
0: जी,
1: ऐसे तबले के घराने बने।
0: हाँ हाँ,
1: और उसमें भी बहुत शैलियाँ विकसित हुई
0: जी
1: और कई सारे तबले के मतलब स्वतंत्र वादन के कार्यक्रम और तबला संगत ये दोनों चीज़ें उसमें आ गई
0: जी। इसमें भी कुछ महनीय कलाकारों ने बोल निकालने का यानी तबले से बोल बजाने का अपना अपना तरीका विकसित किया।
1: बिल्कुल, मतलब घराना जो होता है वो उसी विशेषता से लेकर होता है। घराने जो तबले के हैं उनकी जो बोल है
0: हाँ
1: उसके वो बोलों के आधार पर उसका घराना पहचाना जाता है। तो ऐसे तबले के घराने और उनका बोल और उनका पूरा साहित्य विकसित हुआ
0: है।
1: पखावज के जो खुले बोल है
0: जी,
1: तो एक ऐसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं। अब तबले पे ही उसका मतलब निकास कैसे होती है, तबले पर पखावज की निकास है ये
0: जी।
1: तो

पखावज का एक नमूना है कि ये खुला बोल पखावज व्यवस्था है। अभी ये तबले के जो बोल होते हैं वो बंद बोल है, तो वो किस तरह से होते हैं?

0: बात कर रहे थे रविंद्र जी चौताल की
1: जी।
0: तो चौताल जिस गीत में हमें सुनने को मिलता है, ऐसा कोई गीत आपको याद आ रहा हो तो अपने श्रोताओं को सुनवाएं।
1: हाँ बिल्कुल याद आ रहा है। चौताल जो है धा धा दिन का कीट, धा दिन का कीट कत गदी जन धा।
0: जी
1: इसमें सबसे पुराने तीन ग्राम गीत है जो चौताल में निबद्ध है। बहुत ही लाजवाब है और बहुत कम ऐसे गाने सुनने को मिलते हैं जो चौताल में मृदंग के ऊपर पखावज के ऊपर वो बजाए गए।

समय और अनेक सरल को देखते हैं।

प्रवेश कभी कभी आप अभी पहले फिल्म जाने के पहले आपने जो गाना सुना था उससे हमने अनारी फिल्म से लिया था लता मंगेशकर जी और मुकेश की आवाज़ें थी, शैलेंद्र ने बोल लिखे थे और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी अभिजीत आप सुनाई थी। उससे हमने शेजार को भी फिल्म से लिया था लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ें थी और गुरु ने बोल लिखे थे शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर

0: के साथ एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा।
1: धीरे धीरे से गूंजते हैं कुछ अनमोल लग रही।

0: सदा रहेगी।
1: कुछ नहीं, रोज रात 10 बजे

और मोहम्मद

0: पुर और मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे। इसे लिखा था मजनू सुल्तानपुरी ने और इसकी की धुन बनाई थी रोशनी ने। हम राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की छोटी भी धड़कन विविध भारती से।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लो। सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ। शाम का शो बुक कर लो।
1: ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?

sẽ là cảm ơn của mình.

नमक जी लता मंगेशकर मनाली से आवाज है आपने अभी सुना हमारे प्यार से कार्यक्रम में अब इसके बारे में फिल्म की लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में सचिन पदायनी के बोल हैं और साथ की

0: सीटें राजस्थान और मध्य प्रदेश में तीन तीन सीटें, झारखंड में दो सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में एक एक सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में एक एक सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UP की 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
1: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल पोषण, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा।

0: मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: वहीं पर

0: काफी लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम के जो एज के हिसाब से
1: यही

चांदा के अकेले के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला, उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंके। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौकी लगाने

केवल देश भर में दूध की उपलब्धता को आशातीत रूप से बढ़ावा ही नहीं बल्कि बच्चों में कुपोषण को भी कम कर दिया और

का कदम सफल हो सकता है। हम जागरूक रहे और कई कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा सबसे बड़ा

अभी उनका भाग लेंगे अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण उर्वरक उपयोग संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग

blood

是很难解

को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच हरी सहरी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: ljudi ili alati, posjeti se umjesniku ili kakav žaj, ništa ti neći. Dođi ljudi, sve ti se ljudi angar ne, sve ti bi hoćeo ti vam voli, da si ti kone, ti da dobi ne, bato me voli bi, da ti je tako rodi. Dođi ljudi, वेद भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ वेद भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की बस स्टार्ट पर 2 जून से।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे स्मृतियों के बीच।
2: बधाई हो बधाई
0: जन्मदिन की, जिसमें गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का

सुने थे आवाज जो उन्हें हरकत करती थी। कितने लोग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर। तो आज है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी वैश्विक मातृपितृ दिवस। हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है माता पिता के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का। यह अवसर है माता पिता के प्रेम त्याग और बच्चों के पालन पोषण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस ओर ध्यान दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। उनकी उंगली थाम कर हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, वो है हमारे माता पिता, हमारे जीवन की पाठशाला और मार्गदर्शन से ही हमारा सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। आइए हम अपने माता पिता के प्रति

है। माता पिता का सम्मान हर रोज किया जाता है। जीवन भर अपना कर्तव्य निभाई जाने वाली हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में अब हम आपको ये गीत सुनाते हैं।

चाहते हैं कि आवाज़ में लगे टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक,

कटली और साथियों के आवासों में शकील आसमी ने इस चीज को लिखा था, अनुराग सैकिया का संगीत। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुना है भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर। आज है वर्ल्ड न्यूज डे, आज विश्व दुख दिवस है। हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य यह है कि स्वास्थ्य के लिए दूध के महत्व को जानना, डेयरी क्षेत्र के योगदान या फिर डेयरी क्षेत्र के समग्र योगदान को जानना।

के योगदान को भी सम्मान देने की ओर ये दिन याद दिलाता है, ध्यान दिलाता है, जिनके प्रयास से प्रतिदिन शुद्ध दूध हमारे

0: बन जाती है। ईसा के बन के साथी
1: एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा
0: दिल भांति से गूंजते हैं कुछ उम्मीद लगे
1: तेरा जवाब नहीं
0: है मोहब्बत का राज

किया हुआ तो हेलीकॉप्टर मिला फिल्म का गीत आपसे लेते स्वानंद के फिल्म में लिखा

0: आप सही हैं,
1: मेरे मन की बात को समझना। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली

किसी का इंतजार हो या किसी से मिलन की घड़ी, हर ऐसे वक्त में सुमन कल्याण को जिताए गीत उनका साथ निभाते हैं। हर ऐसे वक्त में उनकी जिंदगी से जुड़ जाते हैं सुमन।

पानी करके पूछता ये दीदी भारतीय केंद्र है एफएम की 100.5 वहाँ करने जा रहे हैं। श्रोताओं नमस्कार, गजलों के खास कार्यक्रम कशिश में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त आदि सिंह। सुबह का समय उम्मीदों का समय होता है, एक नया दिन नई रोशनी नए एहसास। ऐसे में अगर कुछ खूबसूरत को छू लेने वाले सुर और गजलों की नरम सी खुशबू पहुंचो तो सुबह और भी यादगार बन जाती है। गजल सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कभी यह दिल की धड़कन बन जाती है तो कभी किसी की याद, तो कभी जिंदगी के सफर में एक हम सफर की तरह। आज के इस महफिल में हम सुनेंगे

Dio benedica.

कहते हैं और अभी आपने सुना जिंदगी मेरे घर आना, जिंदगी जब मेहरबान होती है तो छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन वक्त का एक सच यह भी है कि जो पल गुजर जाते हैं वे अक्सर यादों का रूप लेकर हमारे साथ रह जाते हैं। यादें कभी किसी पुराने शख्स की तरह होती हैं तो कभी किसी भोले बिसरे गीत की तरह कानों में गूंज उठती हैं। तो इस गीत की अमर गजल यह सुनने वालों को

नहीं जिनमें अपनापन शब्दों से नहीं एहसासों से महसूस होता है। जब कोई दिल में बस जाए

में हमने जिंदगी को खड़ी से महसूस किया, यादों के झरोखों में झांका, मोहब्बत की शादी के जमा और किसी अपने के दीदार की ख्वाहिश को शब्दों में ढलते सुना। गजल की यही खूबी है कि हर शख्स को उसकी अपनी कहानी सुना देती है। शायद इसी वजह से गजलें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और भी करीब आती हैं। उसी खूबसूरत एहसास के साथ सरगम पसंद विराम

मैं भी आपको नया चार साल हो गया है, जीत हराइया वापस मारती हूँ।

一般一个人，他一啊，那个人啊，他平时。

तेलुगु चतुर्थी के लिए भी जाना जाता है। श्रोताओं, ये महीना स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के प्रति जागरूक करता है।

तरह के पूर्ण कुमार को अभी आप सुनने के लिए फिल्म आएंगे जिसके खुद का हिस्सा है राहुल देव बर्मन ने। कार्यक्रम अनुसार जमशेदपुर के तमाम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती के लिए हैं। हमारे केवल हमारे जन्मदाता ही नहीं होते सबके किसी

पूरे विश्व में विश्व अभिभावक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज का ये दिन उन माता पिता और अभिभावकों को समर्पित है जो अपने बच्चों के जीवन को संवारने के लिए दिन रात

things to tell you, but I feel now that my sister has been और आशीर्वाद हमें हमेशा हमारी सबसे बड़ी ताकत बना रहता है। इसीलिए आज के इस विशेष अवसर पर हमने अपने माता पिता और अभिभावकों को धन्यवाद कहना नाम के लिए और अब अपने अभिभावकों के सम्मान में खूबसूरत संगीत सुनते हैं। सभी प्रकार को विश्व अभिभावक दिवस की

नाम सुनते ही अभी मैं की एक नई परिभाषा सामने आ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरगिस दत्त की। नरगिस दत्त का जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। उनका वास्तविक नाम फातिमा राशिद था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और आगे चलकर

की और सबसे प्रसिद्ध फिल्म मदर इंडिया ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई और ये फिल्म ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली भारत की पहली फिल्मों में से एक बनी। आज उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर आज उन्हें हम याद करेंगे।

देश के जाने माने अभिनेता हैं। फिल्मों के अलावा नरेंद्र समाज सेवा और जन कल्याण के कार्यों में भी सक्रिय रहे। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें अभिषेक सम्मान से भी नवाजा गया। 3 मई 1981 को नरेंद्र

याजक राजा हो जाते। साल 1982 में रिलीज हुई इस फिल्म में उन्होंने गुंजा का किरदार निभाया जिसे सभी ने खूब पसंद किया। उनकी मासूमियत, सहज अभिनय और ग्रामीण परिवेश की छवि ने उन्हें रातों रात लोकप्रिय बना दिया। एक जून उत्तर के कानपुर में जन्मी साधना सिंह ने अपनी फिल्मी करियर में यादगार भूमिका निभाई।

ये सिनेमा की सरल और प्रभावशाली अभिनेत्रियों का जिक्र होता है तो साधना सिंह का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी अभिनय साबित की गई दर्शकों का दिल नहीं बल्कि सच्चा और भावनात्मक अभिनय भी जरूरी है। आज उनके जन्मदिन पर हम एक जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं।

की वाणी आकाश वाणी और दिनों को जोड़ने के लिए हमारे ही है बस एक गेट पर हमारे स्टेशन से।

फिर से स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में।

अक्सर मैं आई फिल्म साथी में लौट आई, बाकी तमाम गाने लता के गवाए पर मेरा प्यार किसी है सुमन और मुकेश के रुपया। इसी बरस आई ब्रह्मचारी में शंकर

सभी जानते हैं कि हम सब कस्टमर के लिए कितने खाते हैं, लेकिन जिसका विकास पूरा पीने में बच्चों के सिर्फ हमारे देश में ही नहीं दुनिया भर के माता पिता की परेशानी है। अगर आप हर देश में बच्चों के दूध के गिलास की अपनी एक अनोखी कहानी सुनेंगे तो पता चलेगा कि कैसे हमारे बच्चे जो है नखरे खाते हैं। आप मनाया जाता है, इस अवसर पर आप सभी को हृदय शुभकामनाएं। स्वच्छ भारत में दूध सिर्फ एक पोषण नहीं बल्कि ममता का प्रतीक है। यहाँ सदियों में दादी नानी के नुस्खों वाला इम्यूनिटी बढ़ाने वाला गोल्डन मिल्क यानी हल्दी वाला दूध मिलता है। तो त्योहारों पर केसर, बादाम, पिस्ता और इलायची से महक का गाढ़ा मलाईदार दूध देखकर बच्चे भले ही नाक मुंह सिकोड़े मगर ये छोटा बड़ा सेहतमंद है। अगर पूरी दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में कई प्रकार के दूध मिलते हैं। जैसे मंगोलिया के बच्चों के छोटे को वहाँ मिलता है नमकीन दूध, जैसे मंगोलिया के बर्फीले और ऊंचे मैदानों में बच्चे याक या घोड़ी का दूध पीते हैं। मध्यपुर के रेगिस्तानी इलाकों में सर्दियों से

योग्य दिवस हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा संगठन ने 2001 में की थी। इस दिन का उद्देश्य लोगों को दूध के पोषण महत्व और डेयरी दूध के संपूर्ण आहार के बारे में जागरूक करना है। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है श्रोताओं, क्योंकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन बी12 और कई आवश्यक खनिज पाए जाते हैं। ये बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास, हड्डियों की मजबूती तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है।

मलेरिया माह दिवस की शुरुआत हो रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया एक बार फिर चिंता का कारण बनता जा रहा है। इस पर अब जिले में करीब 2500 मरीज

वाले क्षेत्रों के लगभग 300 गांवों में विशेष निगरानी रखी है। ग्रामीणों को जागरूक करने का अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर मानसून संग बड़ा खतरा, घर घर सर्वे, जांच और मच्छर रोधी दवा मौसम की शुरुआत के साथ में नदियां फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बारिश के बाद जमाव होने से मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो जाता है। विशेष रूप से एनफिलीज मच्छर साफ और ठहरे हुए मच्छर पेपर जीव को फैलाने का काम करता है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घर और आसपास पानी जमा नहीं होने देने, पूरी बांह के कपड़े पहनने, मच्छरदानी का उपयोग करने तथा बुखार, सिर दर्द या

चर्चित रहने की संभावना है। आज का सूर्यास्त होगा शाम 13:26 पर और कल यानी मंगलवार को सुबह सूर्य डूबना जमशेदपुर जिला मौसम

श्री अमर धन जी परिवार समय से भगवान की दुनिया ले जाएंगे इस फिल्म से। और साथ कार्यक्रम नमस्कार जिनसे सुरक्षा अपने दोस्त श्याम जी इधर से फिल्म लेंगे। नमस्कार।

सत्कारण के तहत अभी आप हिंदी में समाचार सुन रहे हैं। श्रोता हम बोल रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे

0: उनका गाना आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में। फारिस कैसर के बोल थे और रॉबिन बैनर्जी का संगीत था। और अब ये संगीत और इसके बाद एक और गीत।
1: हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, बाहर दिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
0: तो वो क्या आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ क्यों नहीं, सखियों ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार।

0: जो स्वामी अनजान के बोलो को संगीत से गवा रहा है अनिल मलिक जी।
1: तुम्हें क्या सेवा कर सकता हूँ?
0: सेवा के बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल मुझे यहाँ एक स्पेशल किस्म का बता
1: लड़के के लिए क्या नहीं है लड़की के लिए?
0: इससे आपका मतलब?
1: जी मुझसे तो नहीं लेकिन फूलों का फूलों से मतलब है। मैं हर फूल हर जगह नहीं ले जा सकता। रंग और खुशबू का अपना एक मजा होता है, उसका एक कैरेक्टर होता है। फूलों में सनाना और मर्दान फूल होते हैं। अब देखिए ना, मर्दों को सनाना और औरतों को मर्दाना फूल ले जाते
0: हैं। समझ गई, ये बुके एक लड़के के लिए है।
1: ओह दैट्स फाइन। अच्छा ये बताइए कि वो लड़का आपको क्या लगता है? मेरे कहने का मतलब इतना था, अगर वो भाई है तो फूल अलग होंगे और वो फ्रेंड है तो फूल ठीक होंगे,

0: கை வேணா பேசினா அவனுக்கு சுமன் கல்யாணம் கூறிச்சு. विविधारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ

0: वर्षगांठ पर हम बुलाएंगे खुशियों के गीत।
1: बधाई हो बधाई
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमालय जी के संग। हिमालय जी साझा करेंगी अपने दिल के बाद दो जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: यह फिल्म अली बाबा और पहले स्टोर का गाना मुकेश और सुमन कल्याणपुर

आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म ज्वाला का ये गाना सुमन कल्याण की आवाज में, बोल हस्त चतुरी के हैं और संगीत है

किया बात है मैंने आनंद बख्शी फिर बोल थे। और आइए हम आपको सुनवाते हैं हसरत से पूरी का लिखा हुआ गीत मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी।

होती है बहुत खास और आपकी कुछ ऐसी ही बात है, ऐसा ही कार्यक्रम है, तो हमारे साथ सफर में आज की जो इबारत है वो

हम विविध भारती पर सुनते भी रहते हैं पर बता नहीं देंगे। जब भी कुछ भी होगा उस समय बता देंगे। सच ही कहेंगे आपसे झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि आप हमारी प्यारी सी उद्घोषिता के साथ एक सच्ची भी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। जब इस तरीके से हम बात शुरू करते हैं और हम जो कहते हैं वो आप घर से समझ लेते हैं। हमारे साथी ने बताया है कि वो तमाम जिन पर आज की इबारत रची गई है और कुछ साथियों ने यही कहा है कि सारे गाने तो इबारत में चुके हैं और एक एक गाना उनको

उसी से फूले फले ऐसी उनकी मनोकामना होती है। निस्वार्थ भाव से वो अपनी संतान को आधार और सुरक्षितता देते रहते हैं। उनके प्रेम की गहराई कभी मापी नहीं जाती। मात्र देवो भाव, पितृ देवो भाव और इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे और मुझे लग रहा है कि आज उनकी पसंद बिल्कुल हमसे ही मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज बच्चों के अभिभावक दिवस पर ये बालक माता पिता अभिभावकों के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन को सुंदरता से व्यक्त करती है। उनका प्यार कभी बढ़ता नहीं बल्कि हर परिस्थिति में संतान के साथ खड़ा रहता है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों में मुस्कुराना और सही राह पर चलना सिखाते हैं। उनकी दुआएं, सीख और हिदायतें उम्र भर हमारा संबल बनी रहती है। उनके स्नेही स्पर्श में ऐसा विश्वास होता है कि बिगड़े काम भी बन जाते हैं। अभिभावक हमारे जीवन की वो अनमोल छाया है जिनकी

ऐसी बसी एफएम के सुनने वाला तो रहा है, तो या तो मुझे सुनता भी रहता है कि चल रहा है।

देखिए पिछले एक हफ्ता में देखा जा रहा है कि जितने भी ड्रंकन ड्राइव के केसेस हैं या फिर एक्सीडेंट के केसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और उसका जो मुख्य कारण जो हम लोग को सामने आ रहा है कि लोग शराब का सेवन करने के उपरांत गाड़ियाँ चलाते हैं। तो ये स्पेशल जो ड्राइव चलाई गई है हम इसको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चला रहे हैं और

0: स्कूलता विद्यार्थी के लिए है ये सब जो तुम विद्यार्थी के पास के से बाकी आपके से कार्यक्रम शुरू लगता है
1: क्योंकि यहाँ कोई नहीं है ऐसा भी मुझे मुझे ना देखो मुझे तुम मेरे पास आओ बीबीएस के साथ साथ भी बताए हर दिन ताकि मेरे विद्यार्थी के नाम में कोई ना जाना बहुत सुंदर आज की बारात यह इंगित कर रही है कि जिंदगी का सब कुछ सीखने वाला सिखाने वाले हमारे अभिभावक हमारे माता पिता होते हैं बेहद खूबसूरत इबारत है आज भी अभिभावक दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरे जीवन के सभी प्रियजनों को माता पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं माता पिता एक भीतर कदम निभाता है इस दुनिया का भविष्य उनके द्वारा प्रतिदिन हर पल निभाए जाने वाले कर्तव्यों पर बहुत हद तक निर्भर करता है

0: प्रेयर जिसकी भावी थी अनुसुदासन मिल जाना। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। शैतानियों की बहुत सारी बातें उसके तहत ये संदेश।
1: 2 जून सिटी सहेली के अंदर में सजी हुई खुशियों की रंगोली, हंसी की चमक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सजीव कार्यक्रम की बस स्टार्ट पर 2 जून।

चीज़ होता है। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनेगा दो जोड़ विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

था। दो हफ्ते ऐसे पड़े कि सारे सवाल मैंने हल कर दिए, तब से लेकर आज तक कभी भी गणित में फेल नहीं हुए। वाह क्या बात है। बचपन में माँ की साड़ी पहनती कूद कर गंदी करके रख दी, और जब माँ ने तीन चार तमाचे लगाए तो साड़ी पहनने का सारा भूत उतर गया। ओहो, इसमें और श्रोता ने बताया है, माँ तो खैर बहुत जल्दी चली गई थी, हम भाई बहनों को तो हमारे पापा ने भी बड़ा किया था और उन्होंने कभी भी हमें नहीं डांटा। आज भी वो हम भाई बहनों के साथ ही सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। उनकी भी तबीयत खराब होती है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सच ऐसा ही होता है। एक और श्रोता ने बताया है कि शैतानियाँ तो बहुत होती थी, पर इन शैतानियों का सरदार भैया रहता था। बेचारा भैया को ही पड़ जाता था। माँ कभी किसी को नहीं मारती थी, माँ इमोशनल ब्लैकमेल करती थी। उसके उस इमोशनल ब्लैकमेल के डर के मारे हम अपनी गलतियाँ स्वीकार कर लेते थे। बोलती थी कि अगर तुमने झूठ बोला तो मेरे मुँह से खून निकल आएगा। पता नहीं कैसे माँ समझ जाती थी कि हम झूठ बोल रहे हैं, और वो मुँह में कुछ लाल रंग की चीज डालकर दिखा देती थी कि मेरे मुँह से लाल खून जैसा कुछ था। और हम भाई बहन डर के मारे उसे पकड़ के वो नाचती थी और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते थे।

होते ही सहेली के घर चले गए थे। उस समय इस बात का अनुमान नहीं था कि घर के सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। चिंता बढ़ने पर पापा जी स्कूल पहुंचे तो पता चला सब बच्चे चले गए हैं। 2 घंटे बाद जब घर पहुंचे तो माँ का गुस्सा पिटाई के रूप में बहुत देर बाद घर आए। उन्होंने प्यार से समझाया कि पहले घर आओ फिर बताओ कर जाओ। ऐसा खट्टा मीठा अनुभव रहा जो अब तक याद है। सच में वो जो धक धक होती है जब पिटाई वो बड़ी खतरनाक होती है और पिटने के बाद जब प्यार मिलता है और जो चेहरे पर मुस्कुराहट आती है वो बड़ी प्यारी होती है। श्रोता कह रही है कि हमारी पिटाई तो नहीं हुई क्योंकि हम तो दूसरों को मारते या डांटते देख कर ही रो देते थे। कभी पापा हमारे छोटे भाई को उसकी गलती के लिए मारते थे, हम रो देते थे। तब बहुत छोटे थे तो पापा कहते थे अब तुम्हारे किसी से डर भी नहीं सकते। और कभी कभी जब हम शिकायत करते कि रेडियो फेंक दिया वो खराब हो गया।

दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पक्षी कल की चिंता में नहीं कीजिए, वे आपके हर पल का आनंद लेते हैं। इसके अनुसार भी भविष्य के तनाव को कम कर

आदमी चैलेंज के रोल सेंटर के असिस्टेंट संगीत और बिल्कुल सही जवाब के लिए शुक्रिया। हमारे श्रोता ने बता दिया, तमाम श्रोताओं ने बताया कि प्रदीप कुमार और फिरोज खान इस फिल्म में अभिनेता के रूप में नजर आए थे। और अब संदेशों की बात हम कर

Gott ermächtigt, dass wir das Leben auch noch mal zufrieden sind. Und das ist also durch die Schöpfung aus dem Grund, dass wir das Leben der Vaterlaster haben. So klar ist es. क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो हमें जरूर बताएं। सोचा लिखते हैं कि जरूरी नहीं कि मार के डरते ही डरें, हमारे मम्मी पापा आंखों से डरा देते थे। जी हाँ, ये आंखों का अनुशासन भी गजब का होता था। एक और छोटा कह रहे हैं कि बाबूजी हम लोगों को जूते डंडा से पीट देते या जिनके सामने आवाज वाला खेलते थे, पर माँ गलतियों पर झाड़ू से मारती थी, पढ़ने को हमेशा बोलती थी कि आज हम भी अच्छे जॉब पे हैं। बाबूजी किताब के लिए हमेशा आगे रहते थे, कलाकार हैं बाबूजी, दोनों हाथों से लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। एक और संदेश में बताया है कि बचपन में माँ बड़े भाई मास्टर जी से मार खाने और उससे बचने के लिए दूर दौड़ कर भागने का आनंद ही अलग था। पर इस संदेश से हमारी पीढ़ी वो थी, माता पिता की मार खाकर रोते थे, इतना रोते थे कि मार खाने के बाद चुप होते थे। बात है इन बातों के साथ चेहरे पर आप सभी की मुस्कान भी आती जा रही है। और एक संदेश में कहा है कि माता पिता बच्चे को प्यार, संस्कार और सुरक्षा देकर पालते हैं, जबकि सास ससुर का रिश्ता में परिस्थितियों का सामना करना, समझौता करना और एक नई सामाजिक दुनिया में अपनी पहचान बनाना सिखाता है। हर परिवार और परिस्थिति अलग होती है, कई बार सास ससुर का अनुभव और सीख जीवन में मजबूती लाते हैं, तो कभी उनके साथ का संघर्ष व्यक्ति को आत्मनिर्भर

मैं कहने लगा अंकल मुझे छोड़ने मत चलो प्लीज, मम्मी बहुत डांटी और पिटाई होगी, मैं चला जाऊंगा। फिर भी ड्राइवर अंकल छोड़ने चले, परंतु पूज्य माता जी को घटना

सीखना इसलिए सही जवाब आ गया शैलेंद्र ने इसी को लिखा था जो फिल्म का संगीत था। इस फिल्म में आशा उत्तर मन्ना डे के साथ छात्रों की आवाजों में आपने गाना सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। रात और दिन फिल्म का जो गाना आपने इससे पहले सुना था उसके बारे में हमारे श्रोता ने बताया कि वो फिल्म पर विशेष आधारित नरगिस जी और फिरोज खान रात और दिन फिल्म का जैसी संगीत और संगीत अकॉर्डियन खूबसूरत और और बहुत सारे श्रोता बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि आज तो मेरे देखने के लिए बहुत सारे गीत सारे संगीत शामिल हो रहे हैं, है ना, खुशी की बात। एक श्रोता ने बताया कि मेरे बेटे का विवाह 9 साल पहले हुआ है, कभी सास और बहू में संकट नहीं होता, माँ बेटे की तरह सहृदय भाव से रहती हैं, फिर भी जीवन का आनंद है, छोटी बातों का कभी छोटा मन नहीं करना चाहिए, झगड़े का कारण एक दूसरे के प्रति तत्व वचन से अभाव बढ़ता है।

है। तो चलिए आप सबको माता पिता दिवस की बहुत शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां। तो अब अगला गाना गाना के लिए और

个不会把人立判刑。संदेश मिला है कि हमारे श्रोता ने बताया है कि माँ से तो नहीं डर लगता था, पिता से बहुत डरते थे। कड़क स्वभाव वाले और सिर्फ पालन पालन के लिए प्रेरित करते थे। आज माता पिता दोनों नहीं हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद से हम कुछ ही हैं। और बचपन की यादें माना सुनकर हमारे श्रोता की उनका था, हम उनके बच्चों को भी बहुत डर लगते

तो उसकी तरफ मैं दिखाती हूँ कि सिचुएशन कैसा बदलाव आ सकता है। और अब अगला गाना आपको सुना रहे हैं।

सोचा ने बच्चे तो हम बच्चे के लिए टॉफी का पैक लेकर आए। मैंने उसको छुपा कर रख दिया। हम सबका ध्यान उसको

बिल्ली से ना कोई दौलत ना कोई खजाना चाहिए, बस माता पिता का प्यार पुराना चाहिए, सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जीवन में जब उनका आशीर्वाद सिरहाना चाहिए। क्या बात है, दूध दिवस की अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक साथी कह रहे हैं कि रोज सुबह

उद्देश्य से ये दिन दुनिया भर के जिसके विषय पर सोचना शुरू करते ही यकायक मैथिली चरण गुप्त की रचना याद आती है, अगला जीवन हाल तुम्हारी यही आंखों में दूध अब आंखों में पानी बने ही जाती हो आज नारी कि नारी हर दर्द को पूरे घर को समृद्ध करती है।

विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, पर भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हाँ, वही कुरियन साहब जिन्होंने भारत में सफेद क्रांति ला

papier la première. J'ai une petite vie. कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम खुद सजग नहीं होंगे, आखिर कौन सा कदम सफल हो सकता है? हम जागरूक रहे और कई कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा सबसे बेहतर योगदान दे। हमारे लिए जितना भी संभव हो, हम उन कुपोषित बच्चों को दूध पिलाएं।

0: की रंगोली रसी की खनक तो यादों की महक बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की बरसात पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर

your money if you get saved. अपने दिल के बाद जरूर सुनेगा दो जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे देश की तेरी ही धड़कन विविध भारती पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे।

घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में तपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। आरती नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।

Thank you.

जी, कोई सम्मान आपने और हर पल हम बोल रहे हैं आपका चुनिंदा

का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाकवाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस कृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जा सकता है, उसको सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए तन को, कितना मलिन चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये चमक दमक, कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता, कितनी दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नव वधु पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती, मेरे पिता ने तुम्हारी पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया है। शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नव विवाहिता वधु को देखने गई थी। उसके सामने ही वो मंत्र मुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी थपथपी लगी रही। और वो जब से लौट कर घर आई, उसकी छाती पर सांप बोझता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का सोलहों आने अधिकार था, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का चट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इसकी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौट।

0: के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे। पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वो विवाह को प्रेम का बंधन नहीं धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने व्यथित होकर कहा,
1: तो माता पिता से कहा होता सुरेश को ब्याह कर देते और वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे,
2: तो गाली क्यों देते हो?

0: सिंह ने व्यथित होकर कहा,
1: तो माता पिता से कहा होता सुरेश को ब्याह कर देते और वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे।
0: तो गाली क्यों देते हो?
1: गाली नहीं देता, बात कहता हूँ। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ दिया।
0: लजाते तो नहीं, उल्टे और ताने देते हो।
1: भाग्य मेरे अंश में नहीं है और इतना तुम्हारा भी नहीं हूँ कि कोई बड़ी नौकरी करके वो पैसा भर।
0: ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरतने लगे।
1: तो तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है।
0: सभी को होता है और मुझे भी है।
1: अपने को अभागी नहीं समझती हो?
0: नहीं समझना क्या, नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता।
1: गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी?
0: तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर ही बैठा है।
1: नहीं सब कहता है बनवा दूंगा, बनवा दूंगा, लेकिन कुछ दिन सहन करना पड़ेगा।
2: समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं, सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी, निश्चय किया या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वो चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था, आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता, कंचन के पाश ही से बंध सकता है। पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ, पीछे से कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अटल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में कितना साहस है जो लीक से जौबर हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था, उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्म त्याग ही का आधार था। वो पहले कलकत्ते गया, वहाँ कुछ दिन तक एक प्रेस की अगवानी करता रहा। वहाँ जब सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है तो वो रंगून जा पहुँचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया, शरीर दुर्बल हो गया, मुख की क्रांति जाती रही। फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर ये मजदूर तपस्वी था। मन ने जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा, अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हेतु है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि ये रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातःकाल सैकड़ों मिठाई खाकर जलपान करते थे, दिन भर दम दम भरकर गांजे चरस और तम्बाकू के दम लगाते थे, अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब का भी शौक था, के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी के देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई, धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। ये प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है, सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे, संध्या हो गई थी। वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था।
1: यहाँ की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती, बेचारा ढूंढो 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहा।

0: आश्रय में न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कमाता उसके हाथ में रख देता। तीन लड़के थे, अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेते थे। न कोई लड़ाई, न बात, न चीज। रात को औरत न जाने कहाँ चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झींगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने। कहने बनवाता था कि नहीं, रुपये पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता। गहनों से तो लगी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम छम की आवाज से कान भर जाते थे। जब गहने बनवाने पर भी निखुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि नारी ही बेवफा होती है। इतने में एक आदमी आकर निर्मल सिंह से बोला,
1: चौधरी अभी मुझे एक सिपाही मिला था, वो तुम्हारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है।
0: हाँ ना, ना। तो मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं।
1: उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगा देगा उसे 1000 रुपये का इनाम मिलेगा।
0: तो तुमने सिपाही को ठीक ठीक बता दिया।
1: चौधरी मैं कोई जवान हूँ क्या? समझ गया कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं जसोदा पांडे है, बाप का नाम सुखू बताया और घर जिला झांसी में। सोचने लगा यहाँ कितने दिन से रहता है। मैंने कहा कोई 10 साल से। तब कुछ सोच कर चला गया, मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपये मैं तुम्हें दिला दूं। मैंने सोचा आप तो 1000 की गठी मारेगा और मुझे 50 रुपये दिलाने को कहता है, फटकर बता दी।
0: मगर जो 200 रुपये देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते, क्यों डर तेरे लालची।
1: 200 रुपये नहीं 2000 भी देता तो ना बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो, जब जी चाहे परख लो।
2: मजदूरों में यूं वाद विवाद चलता रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वो सोचने लगा,

दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीच जाति के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नव वधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विकासशीला मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास प्राय सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य को पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त

0: से कोई काम करते हुए डरती तो स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, दूसरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उतने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के नीचे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट होकर वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पत्नी उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसी क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस सत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: कथा सभा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदि दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति

कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं। और खास करके हमारे जो सचिव सहेली की कल वर्ष गांध है, उनको शुभकामनाएं।

को हम सभी उज्जवल भविष्य की शानदार उड़ान अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य माता पिता होने के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका में

छोटे तो सही पढ़ाते हैं और जो माता पिता के सबसे करीब होते हैं वो हमारे माता पिता ही तो हमारे सबसे करीब होते हैं और बच्चा जब घर से कई बातें सीखता है और जैसा अपने माता पिता को करते देखते हैं वैसा ही व्यवहार उनकी उसके आदत

0: व्यक्त करने के लिए समर्पित है। बच्चे के जीवन में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। केवल पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उनके जीवन जीने की सही दिशा, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं और वो अपने बच्चों के सुख दुख के साथ बनाने की हमेशा खड़े रहते हैं और एक बच्चे की सफलता के पीछे उसके अभिभावकों का त्याग, मेहनत और समर्पण छिपा होता है। वे अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
1: हाँ बिल्कुल। और आज की अगर हम बात करें मंजरी, तो आज के अधिक समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच थोड़ा संवाद कम हो रहा है ना,
0: और कारण भी है
1: मोबाइल और सोशल मीडिया, ये हमारी जिंदगी बन गई है ना, तो रिश्तों में दूरी बढ़ गई है। ऐसे में क्या है कि वैश्विक जो अभिभावक दिवस हमें ही याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: और ये दिन आज तक केवल ये नहीं कि आपने हमें जन्म दिया धन्यवाद,
0: लेकिन हम रिपीट भी कर दी,
1: नहीं ये वो दिन नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये दिन हमें संदेश देता है। और हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका प्यार तो निस्वार्थ होता है और उनका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना है।
0: बिल्कुल। और दादी जी, हम कह सकते हैं कि माता पिता वो छांव है जिससे रहते जीवन की हर धूप हल्की लगती है, उन्हें सुरक्षा स्नेह और अपनापन उनसे मिलता है। जैसे तेज धूप में पेड़ की छाया राहत देती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं, उन्हें उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही बच्चे सही राह पर चलना सीखते हैं। और मंदाकिनी जी, जो पुराने समय की हम बात करें तो उस समय ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में सभी सदस्य होते थे, तो माता पिता तो खैर बच्चे की देखभाल करते थे, लेकिन दादा नानी हुए, नाना नानी हुए, दादा चाची, मामा मामी, सब लोग परिवार के जितने भी लोग होते थे, बुआ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बच्चे का ख्याल रखते थे। तो बच्चे कैसे पल जाते थे
1: पता
0: ही नहीं चलता था, और बच्चों के अंदर से सबके गुण आते थे, उन्होंने कहानी सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके की बातें सिखाता था, कोई कर्तव्य करना सिखा रहा है तो कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई कह रहा है जल्दी उठो, तो ये जो रोक टोक का ताकि बच्चों को होती सिखाने की सीखना चाहिए, नियम अनुशासन सिखाने की, तो उससे बच्चे सीखते थे और सभी उनके माता पिता के ही समान थे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो सभी लोग हम बच्चे की कदर करते थे, बच्चे का लालन पालन कैसे होता था माता पिता को पता नहीं चलता। लेकिन मंजरी, आज स्थिति बिल्कुल अलग है, आज हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, माता जी एकल परिवार हो गए हैं, और ऐसे में बच्चे को जो नौकरी करने वाले माता पिता हैं वो किसी केयर टेकर के उसमें छोड़ जाते हैं। और मुझे खुद भी याद है, मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकर थे, सरकारी नौकरी करते थे और हमें किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे, वो किस तरह से हमारा लालन पालन करते थे ये तो भगवान की इच्छा नहीं थी। और होता था कि जब माता पिता आते थे बड़े परेशान आते थे, क्योंकि जो केयर टेकर है वो उस तरह से तो नहीं पाते जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य पाते। तो देखिए, हमारे बहुत सारे साथियों ने संदेश लिखकर दिया है, एक लिखते हैं कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहाँ से हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उंगली छोड़कर संभलना दुनिया का हर रिश्ता कुछ ना कुछ मानता है, पर माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान के प्रति जीवन भर निस्वार्थ स्नेह रखते हैं, उनका प्रेम किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जवानी में परछाई की तरह साथ रहना और वृद्धावस्था में भी संतान के प्रति चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को सिखाता है।
0: बहुत प्यारी,
1: बहुत सुंदर बात कहती है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि सती से भी मंच संभाल रही दोनों बहनों को बहुत सबसे नमस्कार लिखते हैं। आज अभिभावक दिवस है, इस दिन विशेष का बड़ा महत्व है। इस दिन का आज के दिन दुनिया के सभी माता पिता के साथ साथ सभी अभिभावकों को बच्चों के लालन पालन के साथ उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति उनके विश्वास, समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना है। माता के लिए गुजराती मुहावरा है, माई माँ बाकी बगड़ा बगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जब उजड़ा हुआ कहीं विदाना सब चलता है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात लिखी है। ऐसे मेरे साथी लिखते हैं कि आज अभिभावक दिवस पर विशेष बधाई, अभी तो कोई कलम नहीं बनी जो माता पिता पर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख सके,

0: खुशी का रास्ता माँ से होकर जाता है और मुझे दुनियादारी का सबक मेरे माता पिता सिखाते हैं। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव
1: है। कहते हैं कि माता पिता कहीं तो प्यार है तो कभी नहीं बढ़ता। जीवन रूपी खुले आकाश में उन्मुख पक्षियों के जैसे उड़ने की सीख और हौसला देने वाले देवी है। रोते रोते हंसा देते हैं, दुनियादारी की बातें समझा देते हैं। उनकी दुआ से हम बड़ा नाम करते हैं और दुनिया पर राज करते हैं। असफलता में भी मुड़कर मत देखो, पर अपनी गरिमा को भी संभाल कर रखो। ऐसी हिदायतें उनसे ही मिलती हैं। उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं। उनकी सुनाई कहानियों की खुशबू पूरे जीवन भर महसूस करते हैं। और वैश्विक अभिभावक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं यह मुझे कही। तो अब एक गीत सुन रहे हैं।

0: विश्व दुग्ध दिवस है और हम सभी जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी के लिए दूध बहुत आवश्यक है। और विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। ये दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष एक दिन को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मंजरी, विश्व दुग्ध दिवस केवल हम इसे को उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं बल्कि एक आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है जो अरबों लोगों का पोषण करता है। और ये भी दूध आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है।
0: बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की जो इस वर्ष की थीम है, महिला किसानों का सम्मान। रोजाना दूध पीना स्वास्थ्य लिए अत्यंत फायदेमंद होता है क्योंकि ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को एक बेहतरीन स्रोत है। और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कुछ बच्चे को परेशानी हुई तो तबियत खराब हुई तो उसकी जगह दूध को ही बोल देते, नहीं दूध बंद कर दो, इसका दूध नहीं मिलाना है। तो बच्चों के मुख से दूध पीना बहुत गलत बात होती है। आप पहले उसका चिकित्सीय इलाज कीजिए, डॉक्टर इलाज कीजिए कि उसको क्या समस्या है, तब आप सोचिए कि दूध नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है। समय कितना क्या तक है तो दूध आप नहीं ना दें, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा जीवन पर्यंत दूध बंद कर दें, ये गलत बात।
1: हाँ, ये बिल्कुल गलत है। और हमें डॉक्टर खुद नहीं बनना है, चाहे कोई भी अपना भी डॉक्टर हमें खुद नहीं बनना है। हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए कि क्या दूध हमें नुकसान कर रहा है, दूध हमारे लिए कई बार ऐसा हो सकता है।
0: हाँ,
1: कुछ लोगों को दूध नहीं सूट करता है तो वो नहीं पीते हैं, ठीक है, उसके लिए साइंटिफिक कारण होने चाहिए, केवल ये नहीं, वयम भी होना चाहिए। एक प्रकार इसकी हमारी की अभिभावक दिवस के साथ साथ आज विश्व दुग्ध दिवस हम मना रहे हैं। दूध एक ऐसी जरूरत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है। वैश्विक आहार में दूध का बड़ा महत्व रहा है, इसे संपूर्ण आहार माना जाता है जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। और इसके बिना सुबह की चाय भी नहीं बनती है, आए हुए मेहमानों का स्वागत नहीं होता। और इसके विधिवत उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। अपनी हड्डियों के साथ साथ डेयरी उद्योग को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए। और एक साथ ही लिखते हैं, दूध भी हमारे जीवन का अभिन्न चीज है, खासकर के मेरे लिए तो है क्योंकि दूध के बिना मेरी मन पसंद अदरक इलायची वाली चाय नहीं बनती। हमारी तो यही चाय की शौकीन है। और एक लिखते हैं, देश में दूध उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि दूध स्वास्थ्य स्थिति का संपूर्ण भोजन माना जाता है क्योंकि इसमें मानव के शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन का प्राकृतिक संतुलन होता है। दूध में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो है प्रोटीन, शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस और दांतों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन ए, बी और बी से आंखों, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा स्तर को के लिए बेहतर है। बेहतर लगता है कहना कि बिल्कुल अच्छा लिखा है। और साथ ही एक सुधा लिखते हैं कि जो दूध है वो भोजन में महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं आता, लेकिन दूध को ठंडा पदार्थ के रूप में पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में।
0: बिल्कुल। तो मैं लगता है देखा जाए अगर बच्चे आपके सीधा डायरेक्ट दूध नहीं पी रहे हैं तो आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची मिला के हम पिला दें, या फिर आप दूध को खीर में कन्वर्ट कर दें, या चावल की खीर या सूजी की खीर में भी आप कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट पीस करके मिला के कुछ चेंज करके या ठंडे शरबत उसमें मिक्स करके भी, गुलाब का शरबत मिलाकर भी आप दूध किसी न किसी रूप में

0: के लिए चाय पसंद करते हैं। चाय मिल जाए और साथ में ये बनारस की मटर मंगोली वाला निमोना या नमकीन मिल जाए तो फिर कहनी क्या होती है। हमारी सखी ने ये रेसिपी लिख कर भेजी तो हम वही पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निमोना मंगोली या मूंग की बड़ी उड़द की बड़ी ताजी हरी मटर पीसे हुए मसालों और मूंग दाल की मंगोली से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक करिए। ये उत्तर प्रदेश के घरों में सर्दियों के मौसम में चावल के साथ बहुत चाव से खाई जाती है। इसकी सामग्री इन्होंने ली हरी मटर 2 कप, मंगोली एक कप, आलू से ही आधा कप आलू दो लंबे पतले कटे हुए मसाला पेस्ट इसका है, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च मिट्टी में पिसा हुआ होना चाहिए और तड़का के लिए आप जीरा, हींग और तेज पत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल बनाने की सरसों का तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगोली को और आलू को भून लें, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म करें, मूंग की मंगोलियों को सुनहरा होने तक भूनें और निकाल कर रखें। उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रख के मटर भूनें, बच्चे के तेल आँच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर ले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें हींग जीरा तड़का लगाए, अब कटारा बारीक प्याज, हरा धनिया, लहसुन रसम वाला मसाला पेस्ट डालकर तब तक भूने जब तक तेल अलग न होने लगे। भुनी हुई मटर, साबुत मटर, तले हुए आलू और मंगोली डालें, सभी को अच्छी तरह मिला और इसमें आवश्यकता अनुसार गर्म पानी और नमक डालें। कढ़ाई को ढक कर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें जब तक कि मंगोली और आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाए। अंत में ऊपर से गर्म मसाला छिड़कें। आपका गर्मा गर्म यूपी स्पेशल मंगोली और निमोना तैयार।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा मंजरी।
0: बिल्कुल, क्योंकि मटर और मंगोली दोनों ही बहुत स्वाद से भरपूर होते हैं, मेरी तो बहुत फेवरेट है।
1: बिल्कुल, और मैं धनिया वाला जो मच्छी है ना, धनिया वाली मच्छी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर हमारे श्रोता पसंद करते हैं देखें, वैसे तो उन्हें बनाना आता होगा पर मैंने भी इसको बना के देखा था। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी। आप

कम या ज्यादा, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगी वो सकता है आप उसको ज्यादा पसंद करके मिल सकते। फिर आटा को तैयार करें, बड़े बर्तन में मैदा ले लें, इसमें जीरा अजवाइन साबुत धनिया कुटी डाल लें, नमक और मोयन और पिघलावादी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें। सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रस बच जाए और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर उसको मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, इस तक आटा आप गूंथ लें। आटे को 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर रख दें। फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को खतीरी से दबा कर सख्ता करना है, इसे ज्यादा नहीं पतला करना है, रना बेलना नहीं है। एक फिर दबा कर कांटे की मदद से मट्टी के दोनों तरफ थोड़ा छेद कर लें पांच से, और इसको गर्म गर्म तेल में तलें और धीमी आंच में तलने के बाद जो कुरकुरी मटरी निकल के

कार्यक्रम से हम इजाजत लेते हैं। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

दो साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। दो से ढाई साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है। ठीक है, दूध के दांत होते हैं 20, तो मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत है गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए। और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजीली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है, तो चॉकलेट वगैरह बच्चे इजीली खा लेते हैं, तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए, उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है। बाकी जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज के होते हैं, तो उनके लिए जगह बनाए या उनको डायरेक्शन दिखाए, जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे वो एक सही तरीके से अपनी पोजिशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध से दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके, तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसके टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊँ तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है, और वो क्यों होती है? क्योंकि आने वाले दांत जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं, वो सारे डायमेंशन से चौड़ाई में लंबाई में बड़े होते हैं, तो वो जगह जो फिजियोलॉजिकल स्पेसिस है वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी जाती है। अच्छा, जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज अगर छोटी है पहले से, तो कुछ ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं बचपन में ही, ताकि जबड़े की साइज नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चटनी, सूप स्टिक्स, या फिर कड़क बूंदी के लड्डू, वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर जो अपनी पारंपरिक चीजें है, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज है, लेकिन बच्चे तो ये चीजें खाते हैं, बच्चे बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे, उनको खिलाना, उनको उन

0: बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसके बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज अगर दांतों की बात करूँ तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने की तरफ मिक्स होंगे और वो कहाँ जाएंगे? पेट में। पेट में जाएंगे तो पेट की बीमारियां, बार बार लूज मोशन होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेशन की प्रॉब्लम, ना सिर्फ बच्चों में बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हैं। इवन अगर जनरलाइज मैं बताऊँ ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटी कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम ऑल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम ऑल्सो। बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं। वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं से तो जाके लॉन्च करेंगे और उस जगह से वो बीमारियां फैलाएंगे।
1: ये जो दूसरी बात होती है आपके बात की, तो जब बच्चे अपने तरीके से ब्रश करने लायक हो जाते हैं, सबसे माँ बाप को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह की आदतें बच्चे में डालनी चाहिए? सबसे पहली बात, ब्रशिंग कब चालू होना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग मुंह में जैसे ही पहला दांत दिखता है तब से चालू हो जानी चाहिए। उसके पहले मतलब 6-8 महीने तक तो कोई दांत आते नहीं है, उसके बाद ही दांत आने चालू होते हैं। तो उसके पहले मतलब दांत आने से पहले भी मसूड़े क्लीन करना जरूरी है, मसूड़ों की मसाज करना जरूरी है, ताकि आने वाले दांत जो है वो इजीली आए, बच्चों को तकलीफ ना हो। क्योंकि दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है, तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे, और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हैं बच्चे को, और वो भी ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट दिन में एक या दो बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर होती है वो जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पर मैं आ रहा हूँ कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है। जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ, उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गौज होता है, गौज भी कॉटन की तरह जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं तो बांधी जाती है, गौज भी बोला जाता है, वो सराई गौज की तरह मिलता है मेडिकल शॉप में। अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुलता या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आपको सिंपल गौज पीस को पानी में डुबा के नीले गौज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से। छोटे बच्चे, छोटे बच्चे एकदम, हाँ एकदम छोटे बच्चों के लिए एक या दो दांत या 4 दांत आए हुए हैं, फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे तो उंगली में ब्रश जो मैं बोल रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हैं। अभी उसमें 0 से 3 ईयर्स मतलब बचपन पैदा होने से लेकर 3 साल तक एक अलग टूथपेस्ट आता है, जो बच्चे इंजेक्ट करें खा लें तो भी कोई उनको तकलीफ ना हो, बिल्कुल उसकी जो बनावट है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है, जिससे फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों जरूरी है? क्योंकि दांतों में बनने वाली कैविटीज को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है। तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहाँ से आधे दांत दूध के होते हैं आधे होते हैं परमानेंट, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक। तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पहले तो उनको बचपन से ही उंगली वाले ब्रश की अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना जरूरी होता है, वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ ब्रशिंग इज मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ अभी मुद्दा निकला है तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज करें, तो ये हम सभी के मामले में करना, बच्चे हो या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है, ठीक है। वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटालिटी है जब तक वो ब्रिकल है ब्रश के टेढ़े मेढ़े घट ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले लें तब तक हम लोग चेंज नहीं करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, माइक्रो ब्रिकल्स रहते हैं वो उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है ब्रिकल्स में कि वो टेढ़ हो जाए या फिर उसका कलर चेंज हो जाए, तो आपने ब्रश को चेंज करना है। उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या टेढ़ हो जाता है, जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजीली मिल रहा है, ट्रेनिंग करते हैं बच्चे, स्कूल भी अभी ज्यादा पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, तो वो चीजें खिलाए नहीं खिलाए, बच्चे हैं उनका खाना हक बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूँ वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड, चॉकलेट, चॉकलेट आइटम, तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली डायबिटीज नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उनको दे सकते हैं, लेकिन उससे
0: टाइम फ्रेम होना चाहिए 15 मिनट का विंडो। ये साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने जो चीजें उनको पसंद है। उसमें बिस्किट आ गए, चॉकलेट आ गए, वेफर्स आ गए, आ गए, कुछ भी सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना वैसे खाओ, दोनों हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली करके रख के खाओ, चलेगा। लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है। ओके, तो नॉर्मल दो टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग फूड के बाद, इससे कैविटीज नहीं होते हैं एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही है तो हमको कहीं बाहर लेविंग नहीं होता है। बाहर इजीली जो बच्चे अटैक हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं तो वो ट्रेनिंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रखते हैं तो ऐसी जगह पे रखना, एक डब्बा रहे जो उनको दिखे एक्सेसिबल ना हो, इजी में वो पहुंच ना पाएंगे तो आप सो जाओगे, वो वापस खाने बैठ जाएंगे। बिल्कुल, तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है। लेकिन अब यहाँ एक गाने की बारी है, फिर आगे की बातें करते हैं। तो बताइए आपको कौन सी गायक बहुत पसंद है? मुझे पुराने गायक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे किशोर गायी, किशोर कुमार जी। क्या बात है, तो पहला गाना कौन सा सुन रहे हैं आप?
2: पहला गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है वो साक्षी रे, मुकद्दर का सिकंदर।
0: क्या बात,

0: ऊपर रहती है 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस। तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया बिल्कुल। इसके लिए कैविटी जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है तब कभी दर्द नहीं होता। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है, कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, तो इससे तेल से जो कुछ मिले उसको निकाल देते हैं, लेकिन नस तक अभी तक पहुंचा नहीं है। देखिए धीरे धीरे वो बैक्टीरिया अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिझिराहट हो रही है या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिझिराहट हुई, उसके बाद चला गया, कभी भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से मिलता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो बोलते हैं तब होना चालू होता है, जिसकी अंदर क्या क्या चीज एग्जैक्ट डॉक्टर साहब बोलते हैं बचा लो। हाँ जी, उसमें भी कुछ लोग काउंटर सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं, अभी वो नस चढ़ गई है। नस चढ़ने के बाद नीचे हड्डी के नीचे सबसे जमना चालू होता है, उसको डेंटल एब्सेस बोलते हैं, ये बहुत छोटा बात है, फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है और या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है, पर असलियत ऐसी नहीं है। असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम 1.5 गुना दांत अंदर होता है, हड्डी में बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीजें चबा पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीजें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीजें खा पी रहे हैं वो जरा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। तो ये मिथ लोगों ने थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, सिर्फ 1.5 गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है,
1: बिल्कुल,
0: तब जाके वो खड़ी रह पाती है।
1: सेम बात
0: यहाँ पे है, फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा, वही प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है। ये चीज है, तो ये कैविटीज जब नस तक पहुंच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं करी, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटी शुरुआत में स्टार्ट होती है बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और आंतड़ियों में, इंटेस्टाइन में, बहुत सारे तरीके, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरिया हैं उतने सारे तरीके के बैक्टीरिया अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तब सड़न बढ़नी चाहिए होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हेड ऑफ कैपेटाइट क्रिस्टल्स, जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं। और ये कब होता है? दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक। हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट को जल्दी डोज दे देते हैं, हाँ उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी भूख है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 से 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमीडिएटली विद इन 5 मिनट के अंदर, वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है, मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है। तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमोसफियर में जो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए या फिर वहां वो बैक्टीरिया है वो खुद दांतों को गलाना चालू कर देते हैं, और ये हम खुद

0: उसको मुंह में दाल घोल के बैठे हो, रात में नॉर्मली जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खाते तुरंत सो जाते हैं, तो अपना जो थूक है सलाइवरी सिक्रीशन है वो भी कम हो जाता है, नहीं तो सुबह तक वो भी कुदरती देर है वो फंक्शन रहता है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा बिल्कुल ठीक है, तो वो सिक्रीशन कम होता है, तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं वो भी कम हो गए। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, नेचुरल रिंसिंग देना रातों को, तो वो भी नहीं हो पाता है, इसके लिए रात में जो लंबा समय 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं, इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है। और सुबह से ही बातें और हाइजीन की चल रही है, और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह की क्वालिटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीजें हैं। आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के बाद बड़े मजबूत देखे गए, हमारी दादी नानियां कड़क से कड़क थी, मतलब आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा उससे कहीं ज्यादा कड़क चीजों को मरोड़ अखरोट जैसी चीजों को जमने के बच्चों में तो वो उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों वाले जमाने में हैं?
1: अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा, यहाँ प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है, सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल और जॉ बोन हड्डी जो होता है जबड़े का उतना स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं पा रहा
0: जैसे पहले के बुजुर्गों का रहता है,
1: क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था, फाइबर बोलते खाने में बेसिक है, मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहाँ क्या करते हैं हम लोग मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है। सेम फेशियल मसल्स क्या होता है जो चबाने वाले मसल्स है उनमें भी वही चीज है, जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगे, और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों का पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, मतलब अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स ये बना है ये खाना पड़ेगा,
0: बिल्कुल
1: ये रूल होता था घर का, आज ऐसे होता है, मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहाँ पे एक विलन का रोल ले लेता हूँ कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये तो खाना ही पड़ेगा। हाँ जी, तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चे से क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए
0: उनके मुताबिक बन रहा है,
1: उनके मुताबिक बन रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए, हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, मुझे लग रहा है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, 8 साल पहले की बात है, बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। 5 साल की बच्ची को लेकर आए थे, दांतों में कैविटीज थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हैं, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन उनका जवाब बहुत यादगार था मेरे लिए, नहीं आजकल बच्चों को पूछना पड़ता है।
0: ओहो,
1: अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे तो। मैंने उनको भी ये चीज हंसते हुए बोल दी थी कि ये थोड़े दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी।
0: बहुत सही है, बहुत सही।
1: तो ये जो दुलार है ना,
0: ये बहुत नुकसान है।
1: हाँ, मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए, इसके लिए मैंने बोला कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है।
0: बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ एक गाने की बारी है, इसके बाद हम रूट कैनाल की बात करेंगे।
1: तो अभी किशोर दा का ही गाना सुने,

0: किन सावधानियों के जरिए और कब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको डाटा स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि नस अंदर होती है, उसके ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर इनामल होता है। तो जब सड़न नस तक पहुंचती है तब जाके रूट कैनल करना पड़ता है। रूट कैनल में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो आपकी नस सड़ रही है उसको साफ किया जाता है और उसकी जगह पे नकली नस बोल सकते हो आप उसको, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल का फिलिंग किया जाता है, ये जिसकी वजह से दांतों का सेंसेशन तो चला ही जाता है बट उसका ब्लड सप्लाई भी काफी हद तक कम हो जाता है। यस, इसके लिए रूट कैनल करने के बाद कैप लगाना मैंडेटरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो दांत का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमजोर हो रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन मिल रहा है दांतों को वो भी कम हो रहा है, और तीसरी बात जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना बड़ा सीमेंट वहाँ पे टिके रहना मुश्किल होता है। चौथी बात ये है यहाँ पे कि नस तो चली गई, सेंसेशन चली गई, तो जब वापस उसमें अगर कैविटी लगेगी तो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा, दांत टूट जाएगा। अभी दांतों के ट्रीटमेंट कैसे होते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं, सबसे पहली बात तो होती है नॉर्मल सफाई करना। जब आपके दांतों में सड़न नहीं है लेकिन दांतों पे कुछ परत दिख रही है आपको, उसको साफ कर लो। उसके बाद आता है फिलिंग करना। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कैविटी दांतों में एक ब्राउन स्पॉट या काला स्पॉट की तरह दिखती है, या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत खाना फंस रहा है, उसी वक्त अगर उसको ट्रीट किया जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है कि उसको साफ किया जाता है, फिर वो गड्ढा बनता है उसमें सीमेंट भरा जाता है। अभी ये दांतों के स्पेशल सीमेंट होते हैं, कुछ लोगों का मित्र यहाँ पे ये भी है, और ये मॉक डेंटिस्ट या फिर स्ट्रीट डेंटिस्ट जो होते हैं वो ये चीज करते हैं कि बहुत बार दांतों में एक्रेलिक भर के दे देते हैं, और एमसील भरे हुए दांत देखे हैं मैं, बड़े बाप रे व्हाइट भरा हुआ देखा हुआ है। इसकी वजह से फिर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो दांत तो चला ही गया, जबड़े का हड्डी भी गल गया, और उसकी वजह से आजू बाजू के भी दो दो तीन दिन दांत निकाल लेते हैं। ओहो, और ये होता है सस्ते के चक्कर में जब लोग भागते हैं, सस्ते में हमारा काम हो रहा है। सीधी सी बात है, दुनिया में आज हर कोई बिजनेस करने बैठा हुआ है, अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है तो बनाने वाला उसको 15 रुपए की या 20 रुपए की बेचेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ से लेगा, वो अपना मार्जिन जोड़ेगा, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रही है या फिर पेशेंट के पास जा रही है, तो हर एक का मार्जिन जोड़ के अगर वो 10 रुपए की चीज आपको कोई 9 रुपए में ऑफर करे तो सीधी सी बात है उसकी बनावट में कुछ खोट है, खामियां है, खुद भी मतलब बनावट खराब है। डेंटिस्ट्री मतलब बहुत सारी चीज ऐसी है शरीर के मामले में जहाँ पे हम लोग शरीर में कुछ चीजें डाल रहे हैं जो एक्सटर्नल है, पर अगर वो शरीर से सुसंगत नहीं होगी, शरीर के मुताबिक नहीं होगी, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि दांतों में कितना ज्यादा प्रेशर है। एग्जैक्टली, तो उस चीज का मजबूत होना कितना जरूरी है। एग्जैक्टली, मतलब अगर यहाँ पे नंबर वाइज मैं बताऊँ, वही मैं कहना चाहता हूँ, दांतों का जो नॉर्मल हमारा बाइटिंग फोर्स रहता है रेंजिंग फ्रॉम 110 टू 130 न्यूटन सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर पे 130 न्यूटन का प्रेशर हम लोग डालते हैं नंबर वाइज, ये बहुत ज्यादा है। तो ट्रीटमेंट पे हम लोग थे तो पहले तो फिलिंग हो गया, उसके बाद फिलिंग प्लस कैप होता है, ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। ये कब किया जाता है? जब कैविटी के बाहर का ऊपर गया है लेकिन वो नस तक नहीं पहुंचा, तो उतना बड़ा सीमेंट लोड नहीं ले पाएगा जितना हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे। तो वो सीमेंट को रिटेन करने के लिए, उसको स्ट्रक्चर रखने के लिए उसके ऊपर कैप लगाया जाता है। फिर तीसरा ट्रीटमेंट आता है रूट कैनाल। जब नस हो गई है, नस इन्फेक्ट हो गई है या फिर नस के नीचे इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसमें 2-3 बार नस के एरिया की सफाई की जाती है, पूरी सड़क साफ करके नस तक एक्सेस किया जाता है, नस के एरिया की सफाई की जाती है, दवाई डाली जाती है ताकि जो बैक्टीरिया अंदर चले गए हैं वो मर जाए, खत्म हो जाए और वो पूरा एरिया असेप्टिक बने। फिर उसको पूरा स्टराइल करके, मतलब फिलिंग करने से पहले भी अलग अलग दवाइयाँ डालते हैं हम लोग उसको, ताकि वो पूरा एरिया स्टराइल हो जाए, डिसइंफेक्ट हो जाए, और फिर हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त हम लोग इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाला फिलिंग या फिर सीमेंट निकाला हुआ है वो कसी से भी टच ना हो, या फिर थूक भी अपनी टच ना हो उसको, क्योंकि थूक में भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे हमने बात की, तो वो भी वहाँ पे टच ना हो, ये ध्यान हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, और आखिरी ट्रीटमेंट होता है दांत निकालना, जबकि पूरा ही दांत टूट चुका है या फिर बहुत ज्यादा सड़न बढ़ चुकी है। जैसे बड़ी टॉबर होती है पीछे वाली, उनकी 2 या 3 जड़ें होती है, उस जड़ों के बीच में कैट आने लग गया है, उस सिचुएशन में रूट कैनाल भी असर नहीं करता है, तब दांत निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दांत निकालने के बाद बच्चों में भी एक चीज होती है जिसको बोला जाता है टेस्ट मेंटेनर, और बड़ों में एक चीज की जा सकती है, दांत बिठाने की जरूरत होती है। मुंह में एक इकलौता दांत ऐसा है जिसको बोलते हैं अक्सल दांत, वो अगर निकाल दिया जाए और ना बिठाया जाए तो चलता है। तो नेचुरली भी जब हम लोग मुंह बंद करते हैं तो विजडम टूथ बहुत सारे केसेस और मैक्सिमम केसेस में टच होता ही नहीं ऊपर नीचे, तो खाना चबाने का एक्सेस कुछ फंक्शन नहीं होता उसका, ना दिखने में वो काम नहीं आता है, तो इसके लिए वो दांत ना बिठाए तो चलता है। लेकिन लेकिन उसे छोड़ के बाकी कोई भी दांत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसे दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी ये क्यों होती है?
1: बिल्कुल
0: नॉर्मली लोगों का सवाल आता है कि क्यों बिठाना है, मैं तो खुद
1: से बिना भी चल सकता है,
0: इससे बिना भी जरा चला, क्योंकि एक ही साइड के दांत निकल रहा है, पीछे की कवर पर है, आगे के दांत है, दूसरे साइड में रूट का फाइन। सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम लोग दांतों का प्रेशर देते हैं तो जैसे हमने बोला कि उसकी डेढ़ गुना जड़ें अंदर होती है, वो जड़ों के द्वारा हड्डी में फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो दांत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो पूरे जबड़े के हड्डी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये उसका फंक्शन, बॉडी की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जो भाग हम लोग यूज नहीं करते हैं बॉडी वहाँ पे न्यूट्रिशन वेस्ट नहीं करती है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ यहाँ पे, तो किसी का हाथ अगर प्लास्टर में है समझ लीजिए, किसी वजह से फ्रैक्चर हुआ प्लास्टर में, एक डेढ़ दो महीने बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है तो आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उतना मजबूत नहीं दिखता है जितना उसका पहले था। क्यों? क्योंकि उतना फंक्शन वो कर ही नहीं रहा था डेढ़ दो महीने तक। वहाँ पे न्यूट्रिशन की सिर्फ जरूरत थी वो घाव भरने के लिए, वो हड्डी भरने के लिए उतने ही न्यूट्रिशन पहुंचाए जाते हैं। वही होता है जबड़े की हड्डी के मामले में, जब दांत निकल गया वो हड्डी का फंक्शन खत्म हो गया तो हड्डी गलना चालू हो जाता है। वो गलते गलते इतना गल जाता है कि आजूबाजू के दांतों का भी हड्डी गल जाता है, एक चीज ये होती है। दूसरी चीज, आगे का दांत पीछे झुक जाता है, पीछे का दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रिस्टोर इट्स फंक्शन। उसके लिए खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल मिल ही रहा है कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है, तो वो बैलेंस करने के लिए जो दांत अवेलेबल है उनको वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है। एक दो दिनों में ये चीज नहीं होती लगता है, लेकिन ये जब होता है और जब पेशेंट की नींद खुलती है तब उनके आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं। इसलिए डॉक्टर के पास जितनी जल्दी हो सके एक के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए। सही बात है, और इसके लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है। डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना तो उसी टाइम से ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है एक मिनट के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा वो चीज, तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए। इतनी सी बात होती है, पर हमारा

0: भी वक्त हमारे पास नहीं है और जब तक प्यास लगती नहीं हम लोग कुएं के पास जाते हैं। दोस्तों मैंने सुना है कि आप गुनगुनाते भी हैं और गाने का शौक रखते हैं।
1: हाँ जी, शौकिया तौर पे रखता हूँ, मैं खुद को गायक नहीं मानता हूँ
0: जी, बट हाँ कभी कभार छोटे मोटे घरेलू जो गेट टूगेदर होते हैं वहाँ पे हम लोग गा लेते हैं।
1: तो हमारे लिए भी गाइए।
0: ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ
1: जी।
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो

0: दर्द होता है तो इंसान बहुत सफर करता है। ये दूसरा वाला सफर जो ये बड़ा खतरनाक है। माँ बाप दो बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टीढ़े मेरे दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए कुछ न कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर आते हैं। ये सब क्या मामला है?
1: जैसे हमने बात की कि जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है तब दांतों को आने के लिए जगह नहीं होती है, परमानेंट दांत बड़े होते हैं तो वो ऐसे जगह मिलती है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तब दांत आगे टेढ़े हो जाते हैं। अभी आगे टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, या फिर ज्यादा आगे है तो इसके लिए वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम होता है आगे चल के, क्या होता है ना, दांतों के ऊपर ही नहीं दांतों के बीच में भी गैप्स होते हैं नॉर्मली। वो गैप्स में जब खाना फंसता है और अगर आपके दांतों के अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो आपको फंसा हुआ खाना समझ में भी नहीं आता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसकी वजह से कैविटीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से दांतों के प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ते हैं और वो व्यक्ति परेशान रहता है जिंदगी भर की मेरे दांतों में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। दूसरी बात, हाँ हमने ब्रशिंग की बात की, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए कोई भी ब्रश आजकल बना नहीं, उसके लिए बना है लेकिन

के लिए वो कहा जाता है, नायलॉन का धागा रहता है, इसको फ्लॉसी बोला जाता है, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं उसको। उसमें भी दो तीन टाइप के आते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल रहे वो आप पीस लेंगे, मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे। अभी आड़े टेढ़े दांतों की बात करेंगे, आगे आए हैं एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते हैं, तो ब्रेसेस इट इज द सोल्यूशन। अभी तो ब्रेसेस में बहुत सारे एडवांसमेंट आए हुए हैं, अलाइनर करके चीज आई हुई है जो पूरे ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं कि पहना है व्यक्ति ने कुछ समझ में नहीं आता कुछ भी, उसको अलाइनर बोला जाता है। तो अभी उसमें भी कैसा है कि बनाने वाली कंपनीज बहुत है, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी बहुत कम है। और प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं है तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोग्रामिंग होता है, स्कैन किया जाता है आपके जबड़े का पूरा, और वो प्रोग्राम बताता है कि वो सेट कितने लगेंगे अलाइनर के। फिर हर सेट आपको 15 से 20 दिन पहनना होता है, तब तब दूसरा सेट पहनना होता है। अभी ये निकालने पहनने वाली चीज है, इसकी सबसे बड़ी खामी भी यही है और अच्छाई भी यही है, ऐसा मुझे लगता है। तो खामी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली लोग निकाल के भूल जाते हैं वापस पहनना, वो भले निकालने पहनने वाली चीज हो लेकिन उसको दिन में 20 से 22 घंटे पहनना जरूरी होता है। सिर्फ ब्रशिंग के टाइम पे या खाना खाने के टाइम पे आप निकाल सकते हैं, बाकी टाइम आपको पहन के रखना है, पहन के बात करनी है, पहन के सोना है, वैसे भी वो दिखता नहीं है। तो मोस्ट कंफर्टेबल थिंग, पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो अलाइनर से नहीं की जा सकती, जैसे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशन है। तो उसके लिए फिर हम लोग हाफ ब्रेसेस से करते हैं और हाफ अलाइनर से ट्रीटमेंट कर देते हैं कि हाँ नॉर्मल पे आ गया, फिर हम लोग अलाइनर से शिफ्ट करेंगे। इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर बजट, बाकी फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए होता है वो सब में आता है, उसमें सेम ही आता है। ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी चॉइस क्या है। जितनी एस्थेटिक चीजें आप लोगे जो ना दिखे या फिर दिखने में ज्यादा खूबसूरत हो तो थोड़ी महंगी जाती है, और जितना सिंपल लुकिंग चीज रहेगा या फिर थोड़ा और दिखने लुकिंग होगा, जैसे नॉर्मली आप मेटल के ब्रेसलेट देखते हो, स्टील के ब्रैकेट लगाए हुए होते हैं, वो एक सस्ता ऑप्शन है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली पेशेंट को कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि महंगे वाली चीज के लिए जाइए, अनफॉर्चुनेटली उनका प्रोफेशन डिमांड ना कर रहा हूँ या फिर लेट वो ब्रेसेस कर रहे हैं, मतलब बड़ी उम्र में कर रहे हैं, तब मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इनविजिबल चीजों में जाइए। पर यंग बच्चा है जहाँ पे एस्थेटिक उससे कंसर्न नहीं है उसने, तब हम लोग नॉर्मली है। तो उसकी वजह से क्या होता है, दांतों की अरेंजमेंट ठीक हो जाती है, तो कहीं पे खाना फंस रहा है नहीं फंस रहा है, वो सारी चीजें क्लीन रहती है और जबड़े की हड्डी की ग्रोथ अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपके दांत आधे टेढ़े हैं, आधा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, भले आप नॉर्मल खाना पीना भी खा रहे हो और फिर भी आधा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर भी आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी गल जाता है, उसको ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोला जाता है, मतलब नॉर्मल बाइट की वजह से ट्रॉमा हो रहा है दांतों को और वो हड्डी गल गई। ये सारी चीजें आप ब्रेसेस से ठीक कर सकते हो, ये चीजें। तो सब कई लोग होते हैं जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, दांतों की बहुत सड़न होती है, पुराने जमाने से एक बहुत बड़ी समस्या पायरी आ रही है, इसकी बात करते हैं। और इसके बाद उन मरीजों की बातें करेंगे जिनको पूरा इंटर बदलने की जरूरत पड़ती है, एक्सट्रीम केसेस की बात उसकी बात करेंगे। चलिए, तो आपका पहला सवाल है पाइलिया जो चीज होती है, एक्चुअली ये बीमारी है जबड़े की हड्डी और मसलों की, अच्छा और दांतों की बीमारी, दांतों की बीमारी है ये पहले समझने वाली बात है। सबसे बुरी बात पाइलिया की ये है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन के लिए, इसमें मैक्सिमम लोगों को दर्द होता ही नहीं है, बहुत सारे केसेस में एक्सट्रीम बुरा हो जाता है तभी भी दर्द नहीं होता। लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि दांत अपने आप हिलने लग गए और अपने आप गिर गए, अपने आप कभी दांत नहीं हिलता है। आप खुद सोचिए कि जितना दांत मुंह में दिख रहा है उससे 1.5 गुना दांत अंदर हड्डी में बैठा हुआ है, वो हड्डी जब गलेगी तब उसका सर उड़ जाएगा, तब दांत गिरेगा, तो हड्डी एग्जैक्टली वो एक दिन में होता नहीं है। पायरिया का बीमारी एक दिन में होता नहीं, उसके भी चार स्टेजेस है, टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन ये क्यों होता है, तो दांतों के ऊपर जो परत जमती है

बैक्टीरियाज हैं वो कहाँ से जा रहे हैं, दांतों से ऊपर जमीन पर रखते जा रहे हैं। वही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी जरूरी होती है। जैसे मैंने बोला कि जो चीज आपके ब्रश से साफ नहीं हो रही है तो उस चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। उसको वक्त रहते ही आपने साफ कर लिया तो बहुत सारे केसेस में ग्रेड वन वाली स्टेजेस में तो सेल्फ रिपेयरिंग चीज है, उसके लिए कोई ज्यादा मेडिसिन भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ साफ करना पड़ता है और अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है उसको। अभी पायरिया जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? एक मकोड़े में सूजन दिखना, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगी। नॉर्मल लोगों के पास देखने के लिए वक्त है नहीं। वो आगे चल के मुंह से बदबू आना, और ये थोड़ा विजिबल ये विजिबल साइड है, लेकिन इसको भी लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि अपने मुंह की बदबू अपने आप को नहीं आती है, लेकिन वो एक सोशल डिलेमा बन जाता है। सोशल डिलेमा बन जाता है अगर खुद को आई तो, अगर आप उस बारे में अवेयर हो लोग आपसे दूर जा रहे हैं, हाँ, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। और नॉर्मली कोई आके खुल के आपसे ये बोलेगा नहीं कि आपके मुझसे बदबू आ रही है, बोलेगा नहीं, खाली अगर इस तरह आपको उस बंदे के साथ या बंदे के साथ उतना क्लोज रिलेशनशिप ना बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे होता है कि कभी कभार ब्लीडिंग होना चालू होता है, मकड़ों में ब्रश खून आ गया, फिर उसके बाद चालू होता है दांत गया। ये स्लो पोर्शन है बॉडी में, मतलब ये बहुत कॉमन है। अभी कल की बात है, मेरे एक दोस्त के पिताजी के कार दाग गिर गया, बोले शुक्रवार को गिरे, मुझे कल फोन आया तो मैंने पूछा कैसे गिरे, अब क्या गिर गए, कितना नॉर्मल है भाई, कितना नॉर्मल है। आपको अभी जो आगे की चीज़ है कि पूरा डेंचर अगर उसमें जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कितनी महंगे दांत हैं, बिल्कुल जो हमें फ्री मिले उसके लिए हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे, ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है। ये या फिर पूरे शरीर की ही कीमत आप लगा लो, रिपेयरिंग की कीमत लगा लो तो करोड़ों में जाती है, कई सौ करोड़ों में जाती है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फ्री में लिया है, उल्टा उसको बर्बाद करने वाली चीज़ों पे हम लोग खर्चा करते हैं। फिर उसमें वो सुपारी आ गई, पान आ गया, जिनके बारे में बात कर रहे तो वो सारी जो सारी चीज़ें तम्बाकू स्मोकिंग और बहुत यंग एज में बहुत गंदी हालत देखी हुई है मैंने, दांतों की, ओवरऑल मुंह की, मसूड़ों की, जबड़ों की। मतलब बहुत बार मैंने जो पेशेंट को लाइन बोली है मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, 25-30 साल की उम्र है लेकिन उनका दांत का कंडीशन होता है 60-65 साल की उम्र के बुढ़ों की तरह, उनको भी मैं ये समझा देता हूँ। और ये नॉर्मली हैबिट जब होती है तभी होता है, बिल्कुल। और जब ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट मांगते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज मांगता हूँ कि

0: कह रहे हैं बिल्कुल सर,
1: तो वो फोर्स जहाँ पे पड़ेगा वहाँ पे अगर टूटते रहेगा तो क्या होता है ना, ये भी एक चीज है कि एक दो बार टूटता है तो पेशेंट खुद ही गिवअप कर देते हैं और नहीं करना है बोलकर छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको ये चीज समझनी जरूरी है कि हर बार महंगी चीज ही अच्छी होगी जरूरी नहीं है, और हर बार सस्ती चीज आपके केस पे काम करेगी वो भी जरूरी नहीं है। केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या आपके ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट होगा, वो आपके डेंटिस्ट आपको बेस्ट तरीका बता सकते हैं। अभी दूसरा तरीका जो है रिप्लेसमेंट का, उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट, जहाँ पे हड्डी में एक इम्प्लांट डाला जाता है। स्क्रू जैसी चीज होती है, एक्चुअल उसका डिजाइन स्क्रू जैसा होता है, एक्चुअल में स्क्रू नहीं होता। वो डिजाइन स्क्रू की तरह देने का कारण ये होता है कि उतना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है हड्डी को उसके साथ पकड़ बनाने के लिए। तो इसके लिए वो इम्प्लांट जाता है हड्डी के अंदर, उसके ऊपर एक अटैचमेंट लगती है जिसको अबटमेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है आज की तारीख में दांत दिखाने का, क्योंकि इस तरीके में नेचुरली जैसे दांत फंक्शन करता है वैसे ही दांत हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। और अभी टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, ये तो एक इम्प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो पूरे मुंह के इम्प्लांट 2 दिन में 3 दिन में हम लोग प्रोसेस खत्म करते हैं। पूरे मुंह के दांत हम लोग इमीडिएट इम्प्लांट करके पेशेंट को 2 दिन में फाइनल दांत दे देते हैं। बहुत जल्दी होने लगा, बहुत जल्दी होने लगा। हाँ, खर्ची भी ठीक होता है, इसका खर्चा अगर मैं बताऊँ तो लाखों में जाता है आएगा, क्योंकि जो हड्डी में स्क्रू जा रहा है वो बना होता है टाइटेनियम, और वो महंगी चीज है। टाइटेनियम सोने से भी ज्यादा महंगा होता है, तो वो महंगी चीज है। प्लस उसके टेक्निकल चीजों में अगर मैं चाहूँ तो जो कंपनी उसको बनाती है, उसकी जो मशीन होते हैं, मतलब एक बार चालू कर दी मशीन तो बल्क प्रोडक्शन करेगी तभी वो रुका पाओगे, नहीं तो एक या दो सैंपल पीस बना के आप रोक नहीं सकते, वो हजारों में बनाने पड़ते। ये कंपनी की मजबूरी है क्योंकि मशीन चलती, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है उसके पीछे, और दूसरी बात वो बाहर भी अपना नफा जोड़ेंगे। तो अगर मैं आपको अंदाजा दूँ तो कम से कम 20-25 हजार के नीचे 70-80 हजार एक तो अगर हम लोग पूरे मुंह की बात करें तो कम से कम 4-5 लाख रुपए से लेके 20-25 लाख तक। ये हो गए फिक्स दांतों की बात। अभी आते निकालने पहनने वाली बात होती है, डेंचर या फिर हम लोग बहुत अपने दादा दादी को अगर देखा होगा पहनते हुए, निकालते हुए निकाल के डब्बे में रखते हैं दांत, तो वो चीज आज की तारीख में ज्यादातर आउटडेटेड हो चुकी है। वो चीज वही पुरानी जनरेशन भी पहनना चाहती है, तो पहले से पहन रहे, लेकिन वो चीज का ड्रॉबैक बहुत सारा है। एक जैसे हमने दांतों के ऊपर कोर्स की बात की थी 120 to 130

इम्प्लांट बहुत महंगा होता है, डेंटल उसके मुकाबले काफी सस्ते हैं। तो कुल मिलाकर वक्ता बातचीत पूरी बातचीत का जो सबक है वो ये है कि दांत बहुत बेशकीमती है, और जैसे कि आपने कहा कि क्योंकि मुफ्त में मिले हैं तो लोग उनकी केयर उनकी कदर नहीं करते, तो रोजमर्रा की स्थिति में इन दांतों को बचाकर रखना जरूरी है। अब अगर मैं आपको कहूँ लास्ट में एक वन लाइनर रीजन भी अपने मरीजों को सुनने वाले

उपस्थित हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ।

बजने को है, कुर्सी पलों में आप सुनेंगे मुझसे समाचार।

0: की हुई।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विजय भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वेबसाइट पर।
0: हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के बीच।
2: बधाई हो,
0: जिसमें गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तैयार नए पुराने। जब आपको सुनाते हैं अमर प्रेम इस फिल्म पर

Pastor Joe Bittinger is a

बालों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रखी थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार।

ये बात को सुनाते हैं फिर कब मिलेगी इस फिल्म का गीत आवाज़ है।

सुना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याण चौधरी की आवाजों में। हसरत जयपुरी की रचना और शंकर जयकिशन का संगीत।

Estamos pensando en

level. They protect you, not that

for?

adoptees, tendencies of adoptees, a topic of Thank you.

yaptığı cehennemi, kimin elinde tutanlarım, hiç

Yeah, because.

Señor había

I feel so good. I feel good.

Thank you.

0: उद्देश्य तृतीय साझा करेंगे। आकाशवाणी परिवार की सेवा निवृत्त सहायक केंद्रीय निदेशक अनिता वैश्वी पटेल। तो चलिए हम उनका स्वागत करते हैं विविध भारती के स्टूडियो में। अनिता जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, मुझे हार्दिक खुशी हो रही है वापस अपने घर में आके।
0: क्या बात है,
1: सब अपने ऐसा लग रहा है अपने अपनी दीवारें, एक अपना फन, क्योंकि इन स्टूडियोज में हम काम करते थे, हम कलाकारों को बुलाते थे, रिकॉर्ड करते थे, और आज हम उसी रोल में बैठे हैं। हमेशा तो माइक के पीछे ही काम करने में आनंद आता था, अच्छे से अच्छे लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाना, और उनसे हमारे जो अनाउंसर होते हैं बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं, किस तरह से बात निकलवानी है ये वो जानते हैं।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: तो उनको वो काम करने दिया जाता था और हम अपना ढूंढने में लगे रहते थे, बस खोजी रास्ता।
0: तो आज हम जो आपने कहा ना कि उद्घोषक बात निकलवाना जानते हैं, तो आज हम भी आपसे बहुत सारी बातें निकलवाएंगे।
1: अच्छा,
0: और आज की बहुत सारी यादों को हम खंगा लेंगे और आपको बहुत सारी यादें साझा करनी होंगी। तो चलिए फिर, यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि विविध भारती के स्टूडियो में अनिता जी के सानिध्य में हमें भी काम करने का मौका मिला, और सेहतनामा कार्यक्रम, आज के मेहमान जैसे कार्यक्रम को उन्होंने रिकॉर्ड किया, और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग उन्होंने की जिसमें आर्टिस्ट को आमंत्रित करती थी और हम सब इंटरव्यू किया करते थे। लेकिन अनिता जी, हम मुंबई की बातें बातें करेंगे, पहले हम आपको उत्तर प्रदेश की गलियों में ले चलते हैं, रामपुर आकाशवाणी, जहाँ आपका सिलेक्शन हुआ था।
1: तो पहली पोस्टिंग रामपुर उत्तर प्रदेश में हुई। तो UPSC में मैंने इंटरव्यू दिया था, आया लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, और रामपुर का नाम पढ़ते ही सब लोग थोड़े से ये कहने लगे

0: खबरें सुनते थे ना, अमीर लड़की को कैसे जाने दें अनमैरिड लड़की को घर से अकेले वहाँ रहने के लिए। तो फिर भी मैंने कहा नहीं मुझे तो जाना है, जिद करी मैंने। उसके लिए मैंने अपनी सहेली से पैसे भी ले आई।
1: अच्छा
0: हाँ कि जाना है तो मैं, फिर मेरे पिताजी मुझे लेके गए अच्छी तरह से। हाँ मेरी मम्मी की एक फ्रेंड का घर भी था वहाँ, तो गए वहाँ ज्वाइन किया। फिर ट्रेन में गए तो इतना प्यार मिला, क्योंकि छोटे से एकदम कॉलेज से निकल के हम वहाँ गए थे। और म्यूजिक की हूँ मैं, तो म्यूजिशियन को इतना प्यार देते हैं, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह हमारे। तो इतना अच्छा माहौल मुझे मिला रामपुर में, बिल्कुल फैमिली की तरह। तीन विंग्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग एंड प्रोग्राम। तो वहाँ कुछ पता ही नहीं चलता था, जब गर्मी का मौसम है या अमरूदों का मौसम है तो बाहर से ठेला जा रहा है तो बुला लिया, सब बैठ के अमरूद भी खाते थे, मूंगफलियाँ। हम कॉलोनी में घुसते थे तो सब कुर्सियाँ डाल के बैठे हैं, मूंगफलियाँ लेके सब बैठे हैं खा रहे हैं। अपना घर पहुँचते पहुँचते आधा पौना घंटा लग जाता था। तो बड़ा अच्छा माहौल हमने देखा, रामपुर की गंगा जमनी तहजीब देखी, कहीं कुछ डर नहीं लगा। और सब एक दूसरे के साथ सहयोग करते थे, सब जानते थे एक दूसरे को। तो एक बार बाजार में सामान लेने गए तो बोल रहा है हाँ हाँ आप बस ऑर्डर दे दीजिए घर पहुंच जाएगा। मैंने कहा आपको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। कहते हैं हम सब जानते हैं, रामपुर में सबको सबका पता है। तो इतना अच्छा, और वहाँ इतनी अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं, खूब साड़ियाँ। मैंने सब रिश्तेदारों को पैच वर्क की साड़ियाँ पहनाई, सब खुश मिल से
1: पहली तनख्वाह मिली थी उसको।
0: हाँ
1: फिर माँ के हाथ में क्या रखा था?
0: माँ के हाथ में तो साड़ी रखी थी कि भाई ये लो मेरी पैच वर्क की साड़ी,
1: जज्बा दिन जमा रहा।
0: हाँ अरे और मेरे पिताजी तो इतना मुझे केयर करते थे। वो रामपुर से हमेशा पास होते थे, दिल्ली से उनका लखनऊ हेडक्वार्टर था, तो आते जाते मेरे लिए कभी बालू चाई कभी को।
1: अच्छा अनिता जी, आपने अभी जिक्र किया संगीत से आप आकाशवाणी में आपका प्रवेश हुआ, तो वो संगीत के बारे में बताइए, क्या शास्त्रीय संगीत आपने सीखा है और क्या क्या तालीम ली?
0: संगीत तो मेरी डायरेक्शन ऑफ लाइफ जो है वो संगीत ने ही दी है। यहाँ तक कि मैं पहले 10th पास करी, जब तो स्ट्रीम सुनते हैं तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, उन्होंने बोला कि तुमने साइंस क्यों नहीं ली। मैंने बोला उसमें संगीत नहीं है।
1: ओहो क्या बात है,
0: इसलिए मैंने वो साइंस नहीं ली। बाकी मैं बहुत काबिल थी तो बन सकती थी। और उसके बाद ये म्यूजिक किया मैंने, और अपनी लाइफ को जो मैं डेडिकेट करती हूँ ना, जो सही रास्ते पे लाया वो मेरे गुरु जी, जिनको मैं प्रणाम करती हूँ, पंडित दिल्ली से मैंने एम फिल म्यूजिक किया,
1: क्या बात है,
0: और जबलपुर यूनिवर्सिटी से बीएड किया, और प्रयागराज यूनिवर्सिटी से कथक में डिप्लोमा किया। ये सब क्योंकि हमारे पिताजी बड़े हमें गाइड करते थे। तो गाने में तो खाना और गाना साथ चलता है, और खूब खाती थी मैं मोटी तगड़ी थी, बिल्कुल खुली कभी नहीं हूँ। स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था, मगर बॉडी बिल्डर वाला स्ट्रक्चर था मेरा, तो बहुत ही अच्छे से रहती थी। तो रामपुर में भी कई बार लोग कहते थे कि मैडम आपसे हमें बहुत डर लगता है, क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ बिल्कुल पर्दा नशीन और एयर वो, हम यहाँ धाकड़ में चले जा रहे हैं, पर्सनैलिटी हमारी। तो बहुत इंजॉय किया रामपुर का। रामपुर में जब हिंदुओं के त्यौहार आते थे तो झूले पड़े हुए हैं, कॉलोनी में भी झूले डलते थे, हमने वो इंजॉय किया जो हमें दिल्ली में नहीं मिल पाता था, क्योंकि दिल्ली शहर है। और उसी तरह से होली आई तो हर एक के घर के आगे एक बड़ी सी टेबल में पकवान रखे रहते थे, और सब सामूहिक रूप से कॉलोनी में होली खेलते थे।
1: क्या बात है,
0: और ये बहुत मतलब असली में त्योहारों का जो मजा है ना, वो इन छोटी जगहों में जाते ही जो आपको प्यार मिलता है ना, ईद हो सब जाते थे मुबारकबाद, दिवाली में मसीहा सजाया सब सजावट होती थी, क्रिसमस में हमारे दयाल साहब थे सब उनके घर पहुंच जाते थे। अनाउंसर से सीनियर, तो हमारे किसी के भी घर में कुछ बढ़िया बनता था ना, तो मैं तो मासूम बिचारी अकेली रहती हूँ ना। मुझे जो बड़े बड़े जो मेरे हमारे जो ऑफिसर थे ना, वो नहीं वो बुलाते थे बच्चे की तरह, भाई जाओ उसको बुला लो वो खा लेगी, अभी बन रहे हैं दही बड़े या छोले भटूरे से बन रहे हैं। तो दीदी घर में कुछ अच्छा बनता था तो अनीता वैसी ही थी तब मैं, तो मुझे बुला लिया जाता था। तो मेरी तो मतलब

0: ट्रेवलिंग करते थे तो हम लोग बड़े खुश होते थे, सुनते थे क्या है बड़ी बड़ी इन जगहों में पान की दुकानों में जोर जोर से बजाते हैं। तो हमारे शेड्यूल हुई हुई जगह या सबरन जब बजरा होता था वहाँ हमसे हम निकलते थे तो हमें भी बड़ी खुशी होती थी और लोगों को भी कोई नया ऐसे ट्रेवलिंग कर रहा है। क्योंकि मैं तो लाइब्रेरी में ही बैठी रहती थी, मुझे इतना शौक था कि अच्छे से अच्छा करें तो लोग कॉम्प्लीमेंट करने आते थे, पुराने पुराने जो सुनने वाले अप्रिशिएट करते थे कि बात ये वाले गजरे हमने पहले इसके सब से सुनी नहीं थी, तो एक मन को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता था।
1: अब जब बात गानों की चल जाए और एक इतनी बड़ी गायिका हमारे सामने बैठी हो तो उनसे हम गवाए नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो अनिता जी कुछ लाइन गुनगुना के सुनाइए उन दिनों की याद करते हुए या आज कुछ गुनगुना के।
0: वैसे तो यूपीएससी के ये जो इंटरव्यू दिया था वहाँ पर भी हमें गा के बताना पड़ा था, ये उनके लिए भी एक अच्छा तरीका था टेस्ट करने का कि जिसको हम संगीत की जिम्मेदारी लिए हम नियुक्त कर रहे हैं वो किसी काबिल है कि नहीं।
1: तो ठीक है वही सुना
0: मैंने कि मेरे अब 25-25 साल से तो मैं काम नहीं लगी रही हूँ, फिर भी थोड़ी कोशिश करती थी।

0: सेटल फैमिली हो गए, हमें
1: तो गला चेंज हो गया है।
0: आप इस हुनर को अभी और आगे बढ़ाएं, हमारी तो शुभकामनाएं आपके लिए, और हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि आप इसे आगे बढ़ाइए फिर से। और अभी आपके पास वक्त भी है रियाज का।
1: हाँ ये तो बहुत अच्छा सजेशन है, सोचती हूँ मैं, क्योंकि अब फ्री हो गई हूँ
0: जी। क्योंकि जब आकाशवाणी में जब आप कार्य कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ होती हैं जहाँ आपके निजी स्टॉक पड़े रह जाते हैं जिन पर हम गौर नहीं करते, तो ये आपके लिए वक्त है। और आप तो फिर से शुरू कीजिए, द्रविड़ भारतीय परिवार की ओर से हम आपके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। और अनिता जी, अब हम आपके आकाशवाणी के सफर पर चलते हैं। आकाशवाणी रामपुर से फिर आप किस आकाशवाणी केंद्र पर गए? 5 आकाशवाणी केंद्रों पर आपने काम किया।
1: हाँ, वो भी अलग अलग स्टेट की
0: जी। तो रामपुर से कहाँ गए?
1: रामपुर से मैं दिल्ली गई। हालांकि रामपुर बहुत प्यारा था, मगर दिल्ली अपना घर था, पेरेंट्स थे, तो वहीं जाना था, तो वहाँ से ट्रांसफर हो गए दिल्ली में। मैंने दिल्ली स्टेशन पे काम किया, संगीत देखा, उसके बाद फिर संगीत विभाग में मैंने देखा नेशनल प्रोग्राम संडे नाइट कंसर्ट, उसके लिए जो भी आर्टिस्ट सेलेक्ट होते हैं, रिकॉर्डिंग आते हैं, उसको बजवाना, वो हमारी जिम्मेदारी थी। उसके बाद फिर मैं वहीं पे इंटरनल ट्रांसफर होते रहते हैं, तो वहाँ गई मैं डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोग्राम एक्सचेंज यूनिट, जिसे DTPEX कहते हैं। तो उसमें पूरे देश भर में इधर से उधर प्रोग्राम का एक्सचेंज किया जाता है सेटेलाइट के थ्रू, वो सेटेलाइट खींच जाता है नहीं सभी तरह के कार्य करते हैं। तो DTPEX में वो काम होता है और सेटेलाइट के लिए शेड्यूल करके दिया जाता है और बाई पोस्ट भी भेजा जाता है, और उसके अंदर फॉरेन के जो प्रोग्राम होते हैं डॉटेबल जर्मनी से जो आते थे और वॉइस ऑफ अमेरिका, तो इन सब के प्रोग्राम्स को हमारे DTPEX में एक तो बड़ी फैसिलिटी थी हाई स्पीड डबलिंग की, तो वहाँ पे उनके बहुत सारी कॉपियाँ तैयार की जाती थी और उनको डिस्ट्रैक्ट कराया जाता था।
0: विविध भारती में भी हुआ करता था जब विविध भारती में जब टेप का जमाना था।
1: हाँ,
0: उस समय यहाँ से सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड
1: टेप के जमाने में बहुत काम होता था, है ना। इवन कमर्शियल्स को भी डबिंग कर करके सब जगह भेजे जाते थे। और फिर उसके बाद एक जिम्मेदारी मेरे पर आई PNN प्रेसिडेंट ब्रॉडकास्ट की।
0: अच्छा,
1: तो उसमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट से और PMO से हमें रास्ता रखना पड़ता था, और जहाँ भी प्रेजिडेंट स्पीच देते थे

0: से जहाँ जैसी है और उनको फिर हम ट्रांसक्राइब कराया करते थे, उनकी स्पीच को लिखवाना ट्रांसक्राइब करते थे, उनसे टाइप करते थे, उसकी कॉपीज बन के उनको हम लोग वॉल्यूम्स हमने बनाए।
1: अच्छा
0: जी हाँ, दिल्ली में वो आर्काइव में वो रखे गए हैं वॉल्यूम, तो वो बहुत बड़ा काम हमने किया। और
1: वो तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी विरासत होगी, वो धरोहर होगी कि अगर थोड़े दिन में जब एक नई पीढ़ी तैयार होगी तो वो प्रोग्राम देखेगी और जाने की
0: चीज़ें पूछते थे। और कभी कभी किसी किसी चीज में इतनी तकलीफ हो जाती थी, क्योंकि वो उनका जो बोलने का प्रोनंसिएशन होता था ना, कई बार भाई बुजुर्ग होते हैं हम इन पोस्ट को पहुँचते पहुँचते, और या फिर संस्कृत में कुछ बोल दिए तो वो समझना, मतलब वो भी बड़ी मुश्किल से, और गलत नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी इधर से उधर एक मात्रा भी,
1: बिल्कुल, क्योंकि
0: तो बड़ा
1: बड़ी
0: चैलेंजिंग होता।
1: भाषा के रूप में भाषा का पैमाना माना जाता है ना, मानक भाषा
0: नहीं, प्रेसिडेंट की वो है तो उसको तो पूरी जिंदगी मेरे साथ रहा, क्योंकि वो हमें अभी तक करना ही पड़ा, अब तक भी करते हैं हम मन की बात की वो करते थे, 100वें एपिसोड तक हमने किया
1: है मन की बात।
0: जी हाँ जी हाँ, हमने उनको किया पूरा बॉम्बे स्टेशन में।
1: क्या बात,
0: स्टूडियो के स्वर आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे आकाशवाणी परिवार की सेवा निवेश के सहायक केंद्र निदेशक अनिता वैश्वी पटेल से रेडियो सिटी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग, इसका दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें

दर्शन तक भी हो जाती है। मुझे अफसोस है कि हमें आप जैसे उम्मीदवारों की जरूरत नहीं। मेरा मतलब है कि हमें ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जिसकी शॉर्ट हैंड की स्पीच कोई जरूरत ना हो, बल्कि शॉर्ट हैंड उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी। तो फिर मैं वही कैंडिडेट हूँ सर जिसकी आपकी तलाश है। वो कहती है शॉर्ट हैंड मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं, बल्कि मैं खुद शॉर्ट हैंड का एक निरसना हूँ। कितने उम्मीदवार स्वस्थ

छोड़े और खुद से चाहते हैं कि सब जाकर कहीं उन्हें जो महसूस होता है कि उन्हें मोहब्बत हो गई, सिर्फ इतना ही नहीं करता, फिर लड़के फिर रिश्तेदार जो लड़की की माँ मामी चाची या फुफा वगैरह उनकी मोहब्बत में रोड़े उठाने शुरू कर देते हैं। अगर मैं एक मोहब्बत की दास्तान सुनाने लगूँ सरकार तो सुबह से शाम हो जाए और दिखने लगूँ तो कम से कम 20 पर सफ़े भर जाए और दास्तानें फिर भी खत्म ना हो। लेकिन अपने देश में तो वही चार चैन वाला मामला। मैं एक दिन बस स्टाफ पर बस के इंतजार में लाइन में खड़ा था कि मेरे आगे एक लड़की खड़ी थी। मैं मैंने उसे कभी बैठे देखा और ना कभी उसने मुझे देखा। लाइन में खड़े खड़े मुझे खांसी आ गई और फिर उस लड़की को भी खांसी आ गई। बस मोहब्बत हो गई, बस इतनी सी बात पर मोहब्बत हो गई। मोहब्बत नहीं सर बल्कि शादी भी हो गई। शादी भी हो गई और वो शादी की चाटने में सर यानी कि न कोई सिखा का न कोई सजाई बस में समझे सरकार कट खांसी और पड़ गया और शादी के बाद बच्चे लोग हुए तो वो भी चार जैन में बस ये भी शॉर्ट में मिले जैसे छः साल में 12 बच्चे बच्चे वो कहते ये चार जैन तो बिल्कुल सिंपल है सर यानी कि एक एक साल में एक एक जोड़ा हो। अब तो आपकी यकीन आ ही चुका होगा सरकार कि जो काम बाकी के उम्मीदवार एक घंटे में करेंगे मैं वही काम सिर्फ 5 मिनट में कर सकता हूँ।

错了呗，交通能力还错了呗。

0: से मिली कार्यक्रम की बस काट पर 2 जून को।
1: हिमानी से जुड़ी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून स्मृति सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के बीच।
2: बधाई हो बधाई
1: जन्मदिन की तुम्हारा। गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनेगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: और छुट्टी कार्यक्रम का ये अंतिम गीत थे विद्यार्थी से सोनू निगम कुणाल राजावाला और श्रेया घोषाल द्वारा से शब्बीर अहमद के बोल धुन बनाई साजिद वाजिद ने और फोन करा पार्टनर।

है हम समय पर अपने घर

सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं, और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए भी इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से,

तो उन चीज को खोलता पाएंगे। मैं ये सच की बात की जगदाई जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जगदाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नर्गिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं इस सन 1935 में जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थी, जगदम्बाई ने उन्हें

फसल पड़ेगी, लेकिन उनका ये अंदाजा गलत हो गया। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए

Christ, are you sleep?

vita di Cristo. Cioè, unisce ciò

बच्चों से ले आई फिल्म क्या तुम जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी बॉडी भी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में तीन बच्चों की चिंता जो होती है संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प हिस्सा फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 वर्ष के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी सुकर ने उनका मेकअप कर दिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आई, सबसे पूछती रही दत्त साहब कहाँ है। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा वो तो सेट पर आए ही नहीं है। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा असल में वही दत्त साहब है। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गई। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी फिल्म की खरीद भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गए। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन जो नरगिस के भाई थे उनके जोर देने पर नरगिस ने सचिन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई

shitty hot homie.

सहुरिश्ता हमारा

तो क्या होगा?

0: दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी।

0: não tem isso.
1: But

非常喜欢警察电影，可是因为

पट्टी पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपने